ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि। तदनुसार 19 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में

0: एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है बिना सौंदर्य के, आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है। मित्रों, ये थोड़ा मुश्किल है कि बिना सौंदर्य के भी कोई जी सकता है। हाँ, जी सकता है जैसे एक पागल, लेकिन पागल की भी तो अपनी सुंदरता होती है। कई बार पागल अपनी दीवानगी से लोगों को मोहित कर लेते हैं। वैसे सौंदर्य विशेषण है, एक विशिष्ट गुण। खलील जिब्रान अपनी पुस्तक द प्रोफेट में सौंदर्य के बारे में देवदूत से कहलवाते हैं, ए अरफालीज के लोगों, सौंदर्य एक जीवन है। जबकि जीवन अपने पवित्र चेहरे से घूंघट उठा लेता है, लेकिन तुम जीवन हो और तुम ही घूंघट हो। सौंदर्य दर्पण में अपने आप को एकटक देखते रहने वाली अमरता है, लेकिन तुम अमरता हो, तुम ही दर्पण हो। यानी यहाँ पर देवदूत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जीवन अपने आप में सुंदर है। सुंदर है इसके दर्शनीय स्थल, सुंदर है इसके कुएँ, बावड़ियाँ और नहरें, सुंदर है वृक्षों के सुंदर सुंदर फल, भेड़ों का रेवड़ और ग्वालिया सुंदर हैं। यानी जीवन सौंदर्य से कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन हमें सुंदरता का ये बोध सहज तरीके से क्यों नहीं होता? हमें सौंदर्य के नाम पर मेकअप रूम का दरवाज़ा क्यों बजाना पड़ता है? क्यों जिम और ब्यूटी पार्लर तलाशे जाते हैं? दरअसल सौंदर्यानुभूति बहुत बारीक अनुभव है। छोटा सा बच्चा पानी के बुलबुलों में सौंदर्य ढूंढकर खुश हो जाता है। उसकी दृष्टि अभी मैली नहीं है, सारा खेल ही दृष्टि का है। सिकंदर जीत कर जा रहा था, रास्ते में एक फ़कीर मिला। सिकंदर ने उसे अदब से सलाम किया और बोला, कोई ज्ञान हो तो दो बाबा। तब साधु ने कहा, ठीक है, एक बड़ा तराजू मंगवाओ। तराजू आ गया। तब फकीर ने कहा, तुम अपना सारा लूट का सोना दूसरे पल्ले में डाल दो। ऐसा ही किया गया। सोने की तरफ वाला पल्ला नीचे झुक गया। अब उस फकीर ने एक चमकती सफ़ेद चीज़ निकाली और खाली पल्ले में रख दी। देखते ही देखते सोने वाला पल्ला ऊँचा हो गया और चीज वाला नीचे। सिकंदर ये देखकर पूछ बैठा,

0: ये क्या है? शांत रहकर देखते रहो, साधु ने कहा और एक चिमटी रेत उठाकर उस सफ़ेद चीज पर डाल दी। इस बार फिर से सोने का पल्ला नीचे झुक गया। सिकंदर बौखलाया और बोला, वही चीज़, अंतर इतना, ये कैसे हो सकता है? फकीर ने कहा, सिकंदर, ये छोटी सी चीज़ आदमी की आँख है। ये जब तक साफ रहती है, दृष्टि अपना सौंदर्य प्रकट करती रहती है और यह बेशकीमती हो जाती है। फिर मैंने इस पर एक चिमटी रेत डाल दी जिससे धुंधली हो गई और हल्की होकर हवा में ऊपर उठ गई। इसका मतलब कुल इतना है कि आदमी की दृष्टि जब तक सुंदर है, अर्थवान है, तभी तक सृष्टि सुंदर और अर्थवान है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो राजन, दृष्टि साफ रखोगे तो तुम्हें हीरे जवाहरात की आवश्यकता ही न पड़ेगी। इतना कहकर फकीर आगे बढ़ गया। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से ये तो सिद्ध हो ही जाता है कि अर्थ वस्तु में नहीं, आँख में है। इसलिए अगर हम भीतर से अपनी आँख खोल कर रखेंगे तो ये सारी सृष्टि हमें सुंदर लगेगी। सौंदर्य इसके अलावा कोई वस्तु नहीं। ओम शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे, आज का विचार विषय था बिना सौंदर्य के। आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में पहला भजन सुनिए आनंद कुमार और साथियों के स्वर में।

अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और सखियों का गाया हुआ ये भजन। अगला भक्ति गीत सुनिए आनंद कुमार और साथियों की आवाजों में।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 80 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 82 तक सस्वर गायन।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूं, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह की सभा में 8:45 पर सुनना न भूलिएगा। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा आज आप सुनेंगे, इसका 7वां अंक। वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। समय याद रखिएगा सुबह 8:45। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1287वां अंक। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम। बहने सुनेंगी घर आंगन कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। आज का घर आंगन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी श्रीमती सपना व्यास और श्रीमती सुरभि बोहरा। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा फिल्म संगीत, अलावा इसके 12:40 पर और दिन में 11 बजे भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। दूसरी सभा का आगाज हम करेंगे शाम 5:05 पर युवाणी कार्यक्रम के साथ। आज का युवाणी कार्यक्रम युवा साथियों के लिए लेकर आएंगे विशाल आचार्य और शिवानी सोनी। 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हम करेंगे शाम 7 बजे।

0: आज का ग्रामीण जगत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे श्री अनिल सिंह और श्रीमती मुक्ता जैन। शाम 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत और लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8 बजे और रात 9:15 पर। और रात 10 बजे सुनना न भूलिएगा फरमाइशी पत्रों पर आधारित आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे श्री सुधीर व्यास। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता देसी गोपालन को बढ़ावा।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करा देसी गोपालन ने बढ़ावा देने के बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कई योजना है इस बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्रीय कृषि मंत्री 2014 महीने शुरू करियो हो। ई योजना रे मैंने जकी देसी गायें हैं बीरे संरक्षण और नस्ल रे विकास ने वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहन करने दिशा में काम करी जाए। साल 2014 महीने ई योजना ने शुरू करने वास्ते 2025 करोड़ बजट राखी जो हो और 2019 में इरो बजट जो है 750 करोड़ रुपया और बढ़ा दियो। इन मिशन रे माध्यम से जकी देसी और दुधारू पशु है बिहार आनुवंशिक संरचना में सुधार कर और नस्ल सुधारो कार्यक्रम आयोजित करी जाए। इस पशुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुए और इसके अलावा दूध उत्पादन और उत्पादन ने बढ़ाने का भी प्रयास करी जाए। देसी पशुपालक है बिहार आय मायने भी बढ़ोतरी हो सी और पशुपालन ने भी एक बढ़ाओ मिल सी कि लोग पशुपालन खानी आसी के इर मायने एक आय मिल सके। ई योजना रे माध्यम में दूध उत्पादन और गुणवत्ता बढ़सी और वैज्ञानिक विधि से जद नस्ल सुधार हो सी तो रोजगार में भी बढ़ोतरी हो सी। योजना के बारे में ज्यादा जानकारी अगर कोई लेनो चाहो तो वेबसाइट है dahd.nic.in बीर माथे जार आप योजना के बारे में जानकारी ले सको। अगर कोई भाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 2023 रे अंतर्गत पात्रता रखे है तो इर मायने आवेदन कर सके है जका आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन रो उद्देश्य राखी जो देसी गोवंश जको है नस्ल रे मायने सुधार करनो उचित संरक्षण दूध उत्पादन में बढ़ोतरी और आनुवंशिक संरचना में सुधार करनो और सागे सागे दुधारू पशुओं की संख्या रे मायने भी बढ़ोतरी करो। ई योजना रे माध्यम से लाल सिंध गिर थारपारकर सहीवाल इसी जगह उच्च कोटरी देसी नस्ल हैं बिरो उपयोग कर और दूसरे नस्लानी गायें रो विकास करनो भी है। किसान आरे वास्ते दुधारू पशु जगह है बियाने गुणवत्ता पूर्वक कृत्रिम गर्भधानरी सुविधा बारे घरे उपलब्ध करी थी और इर अलावा ई मिशन रे अंतर्गत आनुवांशिक योग्यताला सांड रो भी वितरण करी थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन रे अंतर्गत पुरस्कार रो भी प्रावधान है और एक पुरस्कार जको है जद मिल सी तो किसान और पशुपालक भाई आकर्षित होर आप रे नस्ल सुधार खानी प्रयास कर सी। और पुरस्कार पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदान करी सी। पहले और दूसरे स्थान पर आउन नाला नागरिक जके है बियाने गोपाल रतन पुरस्कार दे सी और तीजे स्थान पर आउन नाला ने काम धेनु पुरस्कार दे सी। इर अलावा स्वदेशी नस्लारा जका गो जातीय पशु है बियाने बेहतर संरक्षण करने वास्ते गोपाल रतन पुरस्कार भी दे सी। काम धेनु पुरस्कार गौशाला और जो की सबसे चोखी नस्ल हो सी बी सोसाइटी द्वारा दे सी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2023 रे अंतर्गत गोकुल ग्राम बनी सी और ए गोकुल ग्राम जगह है बठे उसी जटे 1000 से ज्यादा पशुओं रे रखने री व्यवस्था हो। इस सब पशुओं रे पोषण संबंधी अड़ी है बियाने पूरो करने वास्ते और बियाने चारे री जरूरत पूरे करने री व्यवस्था भी हो सी बठे। गोकुल ग्राम रे मायने एक पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान सेंटर इरी

0: व्यवस्था उसी और पशुओं रे दूध की प्राप्ति और गोबर सु जैविक खाद रो निर्माण भी बठई करी सी। इस नागरिक मैंने रोजगार रा अवसर बढ़ सी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन रे माध्यम से वित्तीय सहायता भी मिले है। शुरुआत रे मैंने जठ 2025 करोड़ रुपया रो आवंटन करी जो हो इन मैंने बाद में समय रे सरु बढ़ोतरी होगी। ए योजना जो है सगला राज्य रे मैंने संचालित करी रही है और 2014 सु लेर अबार तक चाल रही है। गोकुल मिशन योजना रा कई लाभ है। ई योजना रे मैंने गाया जकी है खासकर देसी गाया है बिहार नस्ल संरक्षण और नस्ल सुधार ने प्रोत्साहन मिले। इरे सागे सागे आनुवंशिक संरचना में सुधार मिले। इसमें पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुए बिहार दूध रे मैंने और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुए और किसान री आय में बढ़ोतरी हुए तो बिशु लोगों रो पशुपालन करने झुकाव बढ़े। गोकुल मिशन वास्ते जका पात्र है वह भारत निवासी होना चीज है, 18 साल की उम्र हो जानी चीज है या भी ज्यादा होनी चीज है और छोटा किसान और पशुपालक कोई भी भाई इसमें आवेदन कर सके और बिना लाभ मिल सके। अगर कोई भी भाई इस योजना रे अंतर्गत आवेदन करना चाहे तो बिना आपरो निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस व्यवस्था पहले करनी पड़ी और आवेदन करने वास्ते पशुपालन और डेयरी विभाग भी ने जानो है और बठे आवेदन करना है और आवेदन रे मैंने जगह जानकारी मांगी है वे जानकारी भर और दे दो। इन तरह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन रे अंतर्गत आप पात्र हो सको।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता देसी गोपालन को बढ़ावा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोक भजन।

0: लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिर्लां प्रति संसदभवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपय सप्ताह पूर्वं आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.1% यावत् संभूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतद् अभियोगं निष्कासयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस इन्फर्मेशन् ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 21 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

जी हाँ साहब, मेरा मुर्शिद खेले होली और हमारा जो मुर्शिद भगवान खुदा ईश्वर गॉड है वो हमें भी इस जीवन के खेल में खिलवाता है। लेकिन बात यह है कि आज का दिन बेहद ख़ास इसलिए है और हमने ये बात यूं ही शुरुआत करी क्यों, क्योंकि आज है विश्व

फेयर प्ले दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे। जीवन में सभी खेलते हैं, लेकिन जो सही खेलता है अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और सात्विक भावना के साथ खेलता है, वही जीतता है। जब हम फेयर प्ले शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में खेल का मैदान, एम्पायर, रेफरी या उनके जो नियम कायदे हैं वो आते हैं। लेकिन साथियों, फेयर प्ले का दायरा सिर्फ किसी खेल में जीत या हार के नियमों को मानने तक सीमित नहीं है। यह एक सोच है, एक संस्कृति है और जीवन जीने का एक सलीका है। सरल शब्दों में बात करें तो ईमानदारी, गरिमा और सामने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान। खेल के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, भले ही एम्पायर से कहीं छोटी मोटी चूक हो गई हो, तो भी खेलना फेयर ही चाहिए। जब कोई मुक्केबाज अपने चोटिल प्रतिद्वंदी पर वार नहीं करता तो फेयर प्ले है, और जब एक विजेता हारने वाले खिलाड़ी के पास जाकर उसे गले से लगाता है और उसकी मेहनत की तारीफ करता है तो फेयर प्ले की खूबसूरत सी मिसाल होती है। साथियों, खेल तो सिर्फ कुछ पलों का, कुछ घंटों का होता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का खेल तो लगातार चलता रहता है। आज आप सबसे इस आकाशवाणी के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि हम इस फेयर प्ले दिवस को अपने साथ, अपने समाज, अपने आसपास के माहौल सब में इसे उतारें, जहाँ हम दूसरों की भावनाओं का उतना ही सम्मान करें जितना अपनी भावनाओं का करते हैं। हम किसी ऑफिस में या कहीं काम करते हैं तो वहाँ कोशिश ये करें कि किसी का हक न खत्म हो, अपनी मेहनत और अपनी लगन से हम आगे बढ़ें। जहाँ हम व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी समाज से हो, सबको बराबरी का दर्जा और सबको बराबर सम्मान दे। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई सिर्फ जीतने की होड़ में लगा है, वहाँ आज का ये दिन, विश्व फेयर प्ले दिवस, हमें याद दिलाता है कि जीतना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से जीतना उससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है। गलत तरीके से हासिल की गई जीत से कहीं बेहतर वो हार है जो ईमानदारी और गरिमा के साथ झेली गई हो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: 1 जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: साथियों, इस अंतराल और गीत से पहले हम बात कर रहे थे खेल भावना ईमानदारी की, यानी कि

फेयर प्ले दिवस पर। और जब बात ईमानदारी, सादगी और देश के प्रति निस्वार्थ सेवा की आती है, तो फिर भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम उभर कर आता है जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। जी हाँ साथियों, आज है 19 मई और हमारे देश के पूर्व और छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती है। साथियों, इनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ। बापू के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्वतंत्रता के आंदोलन में कदम रख दिया और कई बार जेल की यात्राएं की, लेकिन सबसे बड़ी उनकी पहचान थी, वो थी उनकी बेदाग और ईमानदारी और गजब की सादगी। जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के वैभव से दूर रहने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए वापस सरकार को दान कर दिया। वो राष्ट्रपति भवन में एक बहुत छोटे से हिस्से में रहते थे। वो सादगी की जीती जागती मिसाल थे। और एक और उनके बारे में अनोखा इतिहास है कि वो निर्विरोध चुने जाने वाले आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी जी के नाम से ये रिकॉर्ड दर्ज है, आज तक कोई दूसरा बना नहीं पाया। 1977 में वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया, यानी उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। यह बात इस बात का सबूत है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हर दिल के लोग डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी का कितना सम्मान करते थे।

साथियों, हमारा आज का ये कार्यक्रम एक झरोखा है भारत की उन महान धरोहरों को याद करने का, जिन्होंने अपने काम और विचारों से समाज को एक नई दिशा दी। राजनीति और देश सेवा के बाद साथियों, आज उस शख्स को याद करने का दिन है। साहित्य के उस खूबसूरत उपवन में जिसकी खुशबू से हमारी प्यारी हिंदी भाषा महक उठी। जी हाँ, हिंदी साहित्य के नक्षत्र, महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी भी आज जयंती है। अशोक के फूल और मानवता का संदेश। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आते ही हमें उनकी रचनाएं अशोक के फूल और कुटज या बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी किताबें दिखाई देने लगती हैं। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बहुत ही गंभीर और दार्शनिक बात को बहुत सरल और गुदगुदाने वाले अंदाज में कह जाते थे। द्विवेदी जी का एक जीवन का अंतराल, एक लंबा समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन में बीता। वहाँ रहकर उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य का जो गहरा अध्ययन किया, वो उनकी रचनाओं में झलकता है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। जो कोई भी उनसे एक बार जाकर मिलता, उनकी सादगी और उनके ज्ञान का कायल हो जाता। भारत सरकार ने उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से नवाजा। तो आइए हम सभी ऐसे महान साहित्यकार को याद करते हुए नमन करते हैं।

यादों के चिरागों को आंखों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कल फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आज का सुप्रभात कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दे, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। पंकज उदास के स्वर में फिल्म का नाम है संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने सुना कमलेश अवस्थी का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था प्यासा सावन। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और सपना मुखर्जी के स्वर में, फिल्म का नाम है चांबाज़।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और मनहर उदास का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है होटल।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन,

0: जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है। ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
3: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं

0: के अनुसार प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट।
1: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान

0: at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Medium of 215.05 meter, अर्थात 1395 kHz पर और FM band के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक वार्ता, बीकानेर की शिक्षक विरासत। वार्ताकार हैं श्रीमती सरोज राठौड़।
2: प्रगतिशील एवं उदार शासक महाराजा गंगा सिंह ने शिक्षा के विकास को नए आयाम प्रदान किए। 1872 ईस्वी तक बीकानेर राज्य में कोई राजकीय विद्यालय नहीं था। महाराजा श्री डूंगर सिंह के शासनकाल में 1885 ईस्वी में स्थापित विद्यालय एवं निजी मंदिर, मकतब, जैन उपासरों में चलने वाली शिक्षा ही बीज रूप थी, जिसका वास्तविक अंकुरण एवं शिक्षा का वटवृक्ष महाराजा गंगा सिंह के काल में विकसित हुआ। महाराजा स्वयं सुशिक्षित, विद्यानुरागी एवं शिक्षा के महत्व को जानने वाले थे। महाराजा जानते थे कि यदि राज्य का वास्तविक विकास करना है तो प्रजा का शिक्षित होना आवश्यक है। महाराजा ने शिक्षा के विस्तार को गंभीरतापूर्वक लिया। उनका विश्वास था कि लोग अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकते हैं जबकि उन्हें शिक्षा का लाभ मिले। अतः प्रजा का शिक्षित होना आवश्यक है। महाराजा ने राज्य में न केवल पुरानी शिक्षण संस्थाओं का समुचित विस्तार एवं नवीन संस्थाओं की स्थापना ही करवाई, वरन योग्य शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां, व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा प्रबंध, उच्च शिक्षा की प्रशंसनीय व्यवस्था, छात्रों को छात्रवृत्तियां, शिक्षण संस्थाओं को अनुदान, प्रोत्साहन एवं पितृतुल्य संरक्षण आदि नीतियों का अवलंबन कर रियासत में शिक्षा की चहुमुखी उन्नति एवं प्रसारण को संभव बनाया। साथ ही नारी शिक्षा को विशेष महत्व दिया। धीरे धीरे शिक्षा के विकास में राज्य के अलावा सेठ साहूकारों ने भी रुचि लेनी आरंभ कर दी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रारंभ होने से बीकानेर में शिक्षा के प्रति जागरूकता और अधिक बढ़ने लगी और विद्वान शिक्षकों ने अपने निजी प्रयत्नों से जीवन भर शिक्षा की महान सेवा दी। बीकानेर रियासत में शिक्षा प्रगति के लिए निर्मित योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्य को गति प्रदान प्राप्त हुई। शिक्षा प्रगति के लिए बीकानेर रियासत में शिक्षा की प्रगति के लिए निर्मित योजनाओं से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्य में गति आ गई और शिक्षा के प्रति स्थानीय लोगों का रुझान बढ़ने लगा, जिसके पीछे मुख्य कारण था महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बीकानेर राज्य की शैक्षिक विरासत के रूप में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का एक्ट रियासत बीकानेर सन 1929 ईस्वी लागू करना। सन 1928-29 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने शिक्षा के विस्तार हेतु एक क्रांतिकारी प्रयास किया, जिससे राजपूताना की अन्य रियासतों ने भी प्रेरणा ली। महाराजा द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का एक्ट रियासत बीकानेर सन 1929 ईस्वी लागू किया गया। एक्ट के बाद विभिन्न म्युनिसिपैलिटी को उदारतापूर्वक अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई। राजपूताना में बीकानेर प्रथम राज्य बना जिसने न केवल प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एक्ट बनाया बल्कि उसे लागू भी किया। इस एक्ट में 21 दफाएं सम्मिलित हैं। इसमें हलके के स्थानीय हाकिम, म्युनिसिपल बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश थे कि बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस एक्ट में प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य पढ़ने लिखने की, हिसाब की और दूसरे विषयों की ऐसे दर्जे तक की पढ़ाई है जो शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्कूलों में लागू किया गया है। राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद नगर पालिका स्तर पर अनिवार्य प्राथमिक शालाओं पर होने वाले कुल व्यय का 2/3 भाग

श्री जी बहादुर महाराजा की गवर्नमेंट से अनुदान स्वरूप दिया जाता था। यह योजना अति सफल रही और लगभग सभी शहरों कस्बों में पाठशालाओं की स्थापना हुई, जैसे बीकानेर, चूरू, रतनगढ़, सरदारशहर, राजगढ़, सुजानगढ़ आदि। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य रियासत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, भावी पीढ़ी सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं सभ्य हो और राज्य की प्रगति में भूमिका निभा सके। माता पिता अपना कर्तव्य समझकर अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें एवं बीकानेर रियासत का प्रत्येक बालक बालिका प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे। इस हेतु महाराजा गंगा सिंह जी बहादुर के आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षा का हुक्म जारी किया गया, जिसमें मुख्य 21 दफाएं थी, जो इस प्रकार है। दफा एक, छोटा नाम, विस्तार और शुरू होने की तारीख। दफा दो के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए 6 से 12 वर्ष के निर्धारित स्थानीय हाकिम अपने इलाके या रकबे में शिक्षा की व्यवस्था हेतु नियुक्त था। दफा तीन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का

शिक्षित, सुसंस्कृत एवं सभ्य हो और राज्य की प्रगति में भूमिका निभा सके। माता पिता अपना कर्तव्य समझकर अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें एवं बीकानेर रियासत का प्रत्येक बालक बालिका प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे। इस हेतु महाराजा गंगा सिंह जी बहादुर के आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षा का हुक्म जारी किया गया, जिसमें मुख्य 21 दफाएं थी जो इस प्रकार है। दफा एक, छोटा नाम, विस्तार और शुरू होने की तारीख। दफा दो के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए 6 से 12 वर्ष के निर्धारित स्थानीय हाकिम अपने इलाके या रकबे में शिक्षा की व्यवस्था हेतु नियुक्त था। दफा तीन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी करना। दफा चार के अनुसार स्कीम में अनिवार्य शिक्षा का इलाका, इलाके में रहने वाले बालकों की कोमवार गणना, राजकीय एवं निजी स्कूलों की सूची जो प्रमाणिक प्राथमिक स्कूल की होगी, स्कूलों हेतु नई इमारतों की आवश्यक संख्या और इनके प्रबंध के लिए स्थानीय हाकिम की योजनाएं निर्धारित की गई। दफा पाँच में गवर्नमेंट की ओर से स्कीम की मंजूरी दी गई और दफा छः में नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा इसका निर्धारण किया गया। दफा सात के अनुसार स्कूल कमेटी की नियुक्ति की गई और दफा आठ में स्कूल कमेटी का संगठन निर्धारित किया गया, जिसमें 9 से अधिक मेंबर स्कूल कमेटी में होंगे और 4 मेंबर स्थानीय हाकिम शिक्षा का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुनेगा, 1 मेंबर निजी प्रमाणिक स्कूलों के मालिकों की ओर से चुना जाएगा, बाकी मेंबरों की नियुक्ति महाराजा द्वारा की जाएगी। दफा 9 के अनुसार स्कूल कमेटी का एक एग्जीक्यूटिव अफसर नियुक्त किया जाएगा और दफा 10 के अनुसार बालकों को स्कूल भेजने हेतु माता पिता अपना कर्तव्य समझेंगे। दफा 11 के अनुसार बालक को विद्यालय नहीं भेजने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि किस कारण से बालक विद्यालय नहीं आते। दफा 12 में स्कूल कमेटी की ओर से स्कूल में जाने के हुक्म का जारी किया जाना तय किया गया और दफा 13 में विद्यालय में जाने के आदेश की पालना ना करने की सजा का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत यदि कोई माता पिता जिनको पूर्व में आदेश जारी हो चुका है और उसकी पालना नहीं करते तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी ठहरने पर जुर्माने की सजा का भागी होगा, जिसकी सीमा 5 रुपए से अधिक नहीं होगी। कोई माता पिता अपराधी ठहराए जाने पर भी बालक को विद्यालय नहीं भेजता है तो जिसकी मात्रा राशि उतने दिनों के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अधिक नहीं होगी। अगली दफा 14 में प्राथमिक स्कूल में जाने के योग्य बालकों को काम में लगाने वालों के लिए सजा का निर्धारण किया गया, जिसकी राशि 25 रुपए से अधिक नहीं होगी। दफा 15 में सुनवाई का अधिकार बताया गया, जिसमें स्कूल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अधिकार रहेगा कि यदि माता पिता पर कोई मुकदमा किया गया है तो वह सुनवाई का अधिकार रखता है। दफा 16 में जुर्माना राशि का उपयोग शिक्षा संबंधी कार्यों में ही खर्च किया जाएगा और दफा 17 में किसी खास वर्ग या जाति को मुक्त करने का अधिकार गवर्नमेंट रखती है। दफा 18 में पाबंदी न होने पर स्कीम बनाने या उसको अमल में लाने हेतु गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। दफा 19 में पाबंदी न होने पर नोटिफिकेशन को निरस्त करने का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास रहेगा। दफा 20 में नियम बनाने के लिए गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती है और अंत में दफा 21 के अनुसार नियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग को अधिकार रहेगा कि गरीब माता पिता के बालकों को पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा संबंधी आवश्यक चीजें मुफ्त दी जाएं। उस इंतजाम के लिए जो स्कूल कमेटी इसलिए अधिकार कर सकती है कि स्कूल में बालक आवें और उन शर्तों की बाबत जिसके अनुसार स्कूल से गैर हाजिर होने की छुट्टी दी जा सकती है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट रियासत बीकानेर 1929 ईस्वी के अनुसार दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह जी ने जो नियमावली बनवाई उसके बाद शिक्षा निर्बाध गति से आगे बढ़ती रही। रियासत में विद्यालयों का एक जाल सा बनता गया और स्थानीय लोग शिक्षित एवं अपने नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। शिक्षा के विस्तार के साथ ही साहित्यकार, लेखक, उच्च पदाधिकारी बनने लगे, जिससे बीकानेर की ख्याति बढ़ी। महाराजा के प्रयासों से ही

0: ही बीकानेर के प्रत्येक कस्बे गांव तक विद्यालय स्थापित हो पाए। बीकानेर राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट 1929 ईस्वी में लागू कर दिया गया था, जबकि राज्य सरकार में इस प्रकार का एक्ट राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया है।
1: सौरभ, कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी श्रीमती सरोज राठौड़ की वार्ता, बीकानेर की शिक्षक विरासत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चंदन दास का गाया हुआ ये भक्ति गीत।

0: मिडी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के धोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज हम सुनेंगे इसका 7वां अंक। वाचिका है श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह ने किया है।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर में से कुछ सुनहरी यादों को आपके लिए लाते हैं और हमारे पुराने श्रोताओं से ये जानने का प्रयास करते हैं कि रेडियो के सफर में उनके अनुभव और यादें क्या रही। आज के पुराने श्रोता की बात करें उससे पहले हम आपको इतिहास के पन्नों की ओर ले चलते हैं। आज हम बात करते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न को अलग अलग कब किया और इसका असर क्या हुआ। श्रोताओं, भारत के प्रसारण इतिहास में 1 अप्रैल 1976 का दिन एक नए युग का साक्षी बना, क्योंकि इस दिन टेलीविज़न सेवाओं को औपचारिक रूप से आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। इसी ऐतिहासिक विभाजन के साथ दूरदर्शन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस बदलाव के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विस्तार करने और नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिला। श्रोताओं, शुरुआती दौर में टेलीविज़न समाचार सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आकाशवाणी का तकनीकी और संपादकीय सहयोग मिलता रहा। है ना रोचक बात, यानी आज हम और आप दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं, उनको बनाने या प्रसारण करने में कभी आकाशवाणी का सहयोग रहा था। वही वर्ष 1959 में आकाशवाणी के एक छोटे से प्रयोगात्मक स्टूडियो से शुरू हुआ सफर। 1976 के आते आते प्रसारण की दुनिया में एक सशक्त और प्रभावशाली राष्ट्रीय पहचान के रूप में अपनी एक अलग पैठ बना ली। श्रोताओं, 1975 में भी प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई। जी हाँ श्रोताओं, वर्ष 1975 में भारत ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। वो था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, यानी SITE लॉन्च किया। यह भारत के इसरो और अमेरिका के नासा के बीच एक संयुक्त साहसिक परियोजना थी, जिसमें ATS उपग्रह का उपयोग किया गया। श्रोताओं, इसका मुख्य उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा और सूचना पहुंचाना था। श्रोताओं, इस परियोजना के तहत 6 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के लगभग 2400 गांवों को जोड़ा गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीणों को कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया जाने लगा। इस प्रकार आकाशवाणी के कर्मियों ने दिल्ली, अहमदाबाद और कटक में स्थापित आकाशवाणी केंद्रों से इन कार्यक्रमों की योजना बनाई और इनका निर्माण कर इस मिशन को सफल बनाया। और अब चलते हैं हमारे आज के पुराने श्रोता श्री पूनम चंद प्रजापत की यादों और अनुभवों की तरफ। श्रोताओं, आप भीनासर के रहने वाले हैं और आपकी उम्र आकाशवाणी की उम्र के बराबर है, यानी कि 90 वर्ष।
3: मेरा जन्म 1 मई 1935 का रिकॉर्ड में है और मैंने यहाँ भीनासर में पहली राजकीय स्कूल ही थी, एक ही स्कूल थी उस समय, तो मैं वहाँ से पढ़ा और उसके बाद में यहाँ हाई स्कूल बनी, तब मेरा पहला बैच ही था। तब से मैं समझ पड़ी, तब से मैं रेडियो समाचार सुनना और मेरी हॉबी थी लिखने पढ़ने की,

0: रेडियो समाचार सुनना,
1: आकाशवाणी के ग्रामीण जगत कार्यक्रम और लोकगीतों की बात भी की।
0: किसानों का कार्यक्रम जो आता था किसानों के लिए, काफी देर से कार्यक्रम, किसानों की भलाई का कार्यक्रम, लोकगीतों का, ये मैं सुनता था रेडियो। तो गांव में उस समय भी कोई प्रचार शिक्षा का कुछ भी नहीं था ग्रामीण जगत का, लेकिन रेडियो में जरूर किसानों का कार्यक्रम और लोकगीतकार, ये हम लोग सुनते थे। किसानों का अच्छा प्रोग्राम, रेडियो ही एक साधन था।
1: रेडियो के साइज की बात भी आपने कही।
0: रेडियो कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा वॉल्यूम का, बड़ा वॉल्यूम का बिजली का था, और दिल्ली से भी, सेंटर से भी समाचार सुनता था मैं। शुरू से मेरी समाचार सुनने की, लिखने पढ़ने की हॉबी थी। मेरे लेख भी पत्रिकाओं में, रकम में छपे हैं।
1: पूनम चंद जी को जब लोक गीत के बारे में पूछा तो आपने अपनी पसंद का एक लोक गीत भी बताया।
0: लोग तो ये कालूराम प्रजापति का, ये ब्याह बीनने बिल्कुल में तो रहो तो कुंवारो टाबरियो, सगला टाबर भणिया में तो रहो कुंवारो टाबरियो, सर रखे गए लोकगीत तो वो प्रजापति के गीत प्रसिद्ध थे।
1: पूनम चंद जी ने आकाशवाणी के कुछ पुराने कार्मिकों और कलाकारों की चर्चा करते हुए समाचार सुनने का शौक भी बताया और साथ ही साथ समाचारों को लिखने की भी इनकी आदत थी।
0: इसी तरह चंचल हर्ष के भी प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ जैसे जब से मैं शुरू किया मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो यहाँ हमारे गौरजापुर को कार्यक्रम, गौरजा तीज पर कार्यक्रम होता था खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम का। उस समय भी के आकाशवाणी रिकॉर्ड किया था, तो वो हमारे गौरजा का प्रोग्राम थोड़ा खूब नाच गीतकार, उसी में उसमें गीत गौरजा का लिखा करता था और मैं हारमोनियम बजाता था, गीत ही बनाता था। तो वहाँ वो रिकॉर्ड आकाशवाणी ने किया था, और अब तक इतने साल से कम 45 साल हो गए, वो कार्यक्रम अब भी चालू है। गणपत डांगी का कहीं खूब ही प्रसिद्ध गणपत डांगी का प्रोग्राम।

0: समाचार तो मैं सुनता ही था। समाचार का तो मुझे आज भी शौक है कि समाचार देश विदेश के जितने आते हैं चाहे, मैं बराबर सुनता था। और ख़ास बात मेरी ये थी कि मैं विशेष बातों को नोट, डायरी में नोट भी किया करता था, इसलिए मेरी हर साल की डायरी में विशेष विशेष जो जो कि ओकेजन है, सभी घटनाएं दुर्घटनाएं जो है मेरी अंकित लिखी हुई है।
1: रेडियो के लाइसेंस के सवाल पर क्या कहा आपने, सुनिए।
0: लाइसेंस जरूरी था, बिना लाइसेंस से तो शिकायत होती थी, बिना लाइसेंस की तो वो डाकघर वाले कार्यक्रम का एक्शन करते थे। लाइसेंस रेडियो का लेना बहुत ज़रूरी था, रिन्यू कराना पड़ता था रेडियो को। तो लाइसेंस को मुझे याद है कि एक पड़ोस में मेरे एक बिना लाइसेंस वाला रेडियो था, तो डाकघर वाला छापा डाला, उस पर जुर्माना किया था।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी को सुनने वाले श्रोता स्वयं कलाकार बन जाते हैं, क्योंकि गीत संगीत मनोरंजन और सूचना देने का कार्य रेडियो

0: करता है, उसी प्रकार एक श्रोता भी इनमें से एक कौशल तो सीख ही लेता है। हमारे आज के श्रोता पूनम चंद जी भी किसी कलाकार से कम नहीं है।
1: गाने यूँ मैं तो भजन वजन तो हारमोनियम पर गाता ही था, उस राग रागणी में। ये जैसे आज के लोग क्या है कि मिलनसार प्रेम वाले नहीं है, तो इसमें भजन गाया करता था कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़े तब कोई नहीं। सुल्तान जहाँ मासूक तो थे, सुने पड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे, बतलाने वाला कोई नहीं। ये जमाना है आजकल, साधो भाई संतन के गुण न्यारा, रहो चाहे बन में चाहे बसी में, नहीं दी से दो कोई धारा, साधो भाई संतन के गुण न्यारा।

0: उस समय की और इस समय की जो है बहुत अंतर है। लेकिन मुझे यह आश्चर्य है कि आकाशवाणी अभी तक काम करती है। आकाशवाणी तो ठीक ही थी,
1: ठीक ही है
0: टीवी से
1: सर।
0: तो देखा जाए तो टीवी से, टीवी में क्या है, पहले जैसे लोग हथाई करते थे, हथाई का प्रसारण भी होता था रेडियो कर ग्रामीण। अब आजकल हथाई उठ बैठ रही, ये तो मेल मुलाकात ये तो बंद हो गई, सब लोग घर में बैठे मोबाइल से चिपके रह गए, हर हाथ में मोबाइल हो गया। कि अच्छी सामग्री ये उस समय जो आती थी तो वो बेटर ही थी, बढ़िया थी। अब आकाश ये दूरदर्शन में तो, टीवी में तो हर तरह के आती है। अरे तो लोग पता नहीं, लोग अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात को कम पकड़ते हैं, ये मैंने देखा है। ये प्रदूषण एक तरह से प्रदूषण सा हो गया है। टीवी का तो एक अलग स्कोप है और ये मनोरंजन का साधन तो है, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए कुछ उपयोग में, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए रेडियो सुनना अच्छा है। ज़्यादा मेरे ध्यान से रेडियो में सामग्री आती है वो उपयोगी ज़्यादा है। टीवी से, टीवी में तो बहुत सारे के आते हैं तो उपयोगी अनुपयोगी का कोई उसमें नहीं है, लेकिन रेडियो में तो हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मनोरंजन के लिए अच्छी सामग्री आती है। इसलिए रेडियो ज़रूर बच्चों को सुनना चाहिए। घर पर आ कर के आपने मेरे पुराने यादों को, पुरानी कार्यक्रम को याद करके रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसका प्रसारण करेंगे, इसलिए बहुत ही मुझे प्रसन्नता है।
2: तो ये थे आज के पुराने श्रोता श्री पूनम चंद प्रजापत। आपकी उम्र 90 वर्ष होने के कारण अपनी बात कहने में असहज थे, लेकिन इनके रेडियो प्रेम को ध्यान में रखकर हमने इनसे की गई बातों में से संपादित अंश ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और अब अगले मंगलवार तक अनुमति दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि आगामी मंगलवार को एक और पुराने श्रोता और इतिहास की भी कुछ यादें अनुभव लेकर आएंगे। कार्यक्रम का संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा तानवी व्यास की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब आज्ञा दीजिए अगले अंक तक, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफर।

अभी आपने सुना श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा का 7वां अंक। वाचिका थी श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बर

0: का थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा, आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे दिल्ली, NCR, राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक

0: दीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के एसी कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल 2 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही है। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डिंगोरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशलदान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा।

0: प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा, आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मिनी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं श्री सतीश देहरा।

हम आकाशवाणी बीकानेर के झोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मिनीवेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाना चाहे तो मिलाइए, सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1287वां अंक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहाँ अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे

0: में और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षावनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षावनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षावनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षावन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।

0: श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षावनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षावनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षावन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी,
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षावनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षावनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षावनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी,
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
1: जी
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।

0: अरे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो लाल हूं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
2: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
3: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।

0: मारो मारो ठीक से निशाना लगाओ।
1: अरे बार भी नहीं लगी। अरे
0: नहीं लगा ना, लाओ लाओ। रुको रुको रुको, मैं अरे मैं
2: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
0: हाँ?
2: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
0: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
2: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
1: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
2: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
0: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गाँवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं करने देंगे।
9: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी,

0: लारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
5: सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
6: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। उठो शुरू,
5: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था।

0: इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1287वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है अंगार।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह और साथियों का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है बॉर्डर 2।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। नुसरत फतेह अली और साथियों को सुनिए, फिल्म का नाम है धड़कन।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी

0: स्वर्णिम सफर आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक,

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाशवाणी।

0: हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है फर्स्ट लव लेटर।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम था हीरो। ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाना चाहें तो मिलाइए, दिन के ठीक 11:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत, कार्यक्रम का पहला गीत, अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दरार।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रजिया सुल्ताना का ये गीत। गीत को लिखा है जानिशार अख्तर ने और संगीत खयाम का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये गीत। गीत को लिखा था शाहिर लुधियानवी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरियाली और ये रास्ता का गीत। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में आप सुनिए। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, फिल्म है आवारा और आवाज मुकेश की।

गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था मदन मोहन का, आवाज थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा है इंदिवर ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था योगेश ने, गीत को गाया था मुकेश ने और फिल्म थी अन्नदाता। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म गंगा जमुना का ये गीत। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत दिया है नौशाद ने।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: थई झाक दिनक दिन ताक दिनक दिन धाक दिनक दिन ताक दिनक दिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए राजा मेहदी अली खान के लिखे गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनपढ़ फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं

0: में लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
2: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं हमारी इस सभा में दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, माफ कीजिएगा, बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम दिन में 1:05 पर घर आंगन। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में स्त्री विमर्श, फेयर प्ले डे खेलों में निष्पक्षता और महिला खिलाड़ी। साथ ही आप सुनेंगे बच्चों के लिए अनिवार्य टीके और नेतृत्व क्षमता

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा आत्मनिरीक्षण है जरूरी। लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व फेयर प्ले दिवस, नीलम संजीव रेड्डी जयंती और हजारी प्रसाद द्विवेदी पुण्यतिथि। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, आज का युवा और गांधी जी के दर्शन की सार्थकता। वार्ताकार होंगी जूही जैन। कार्यक्रम में आप आखिर में सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसमें आप ही सुनेंगे एक ही संगीतकार के कुछ लिखे गीत। जिले की चिट्ठी सुनेगा संध्या 6:40 पर और ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत संध्या 7:00।

कार्यक्रम ग्रामीण जगत में आज की चर्चा के विषय रहेंगे नीम लेपित यूरिया, फसल चक्र और विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आवासहीन परिवारों को पट्टा वितरण। जल ही जीवन है और साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी और आखिर में न्यूनतम समर्थन मूल्य।

संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और लोक संगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 8:30 रात्रि 10 फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। समय रहेगा रात्रि 10।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सिंधी कार्यक्रम सुनेंगे।
1: सिंधी प्रोग्राम मुधनणन सभी साथियों के वंदेता आहुजा जो प्यार भरियो नमस्कार। अज जे सिंधी प्रोग्राम में असा तमालाए खणी आया हयूं रेडियो जे खजाने जे तहत एक भगत आई गडोगर बुधंदा सी कुछ कलाम। पर सबका पहरी तवा के बुधायूं त अज 19 मई ते असी मल्हाए रहे हयूं वर्ल्ड फेयर प्ले डे। साथियों फेयर प्ले बुधी करे ही हन दिया जो मकसद समझ में अचे थो त इहो डीह रांदियुन में कायदन के मञण बियन खिलाड़ियों लाए सम्मान ॾेखारण ऐं हिंसा या डोपिंग जे ख़िलाफ़ तकरार जे अहमियत खे ॾेखारींदो आहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा 19 मई खे आधिकारिक तौर ते विश्व निष्पक्ष खेल दिवस वर्ल्ड फेयर प्ले डे जे रूप में मल्हाइण जी मञता ॾिनी। साथियों इन खे ईअं बि सम्झी था सघूं त का रेस पई थिए ऐं उन में को खिलाड़ी अॻियां निकिरी वियो, पर जॾहिं हुन ॾिठो कि उन ई रेस में भॼण वारो ॿियो को साथी किरी पियो आहे त हुन पहिरीं पंहिंजे साथीअ खे उथारे बीहारियो ताकी हू अॻियां रेस पूरी करे सघे। इहा थींदी आहे स्पोर्ट्समैनशिप। इन स्पोर्ट्समैनशिप लाइ इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। त साथियूं असांखे बि ज़िंदगीअ में रांदियुनि जी भावना खे हमेशह जीअरो रखणु खपे, हा न साथियूं?
2: साथियों तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो पर

0: कदें तमा दुकान ते आयो, कदें ऑफिस में, कदें मार्केट निकता आयो, त कदें सफर पिया कयो, त रेडियो सेट के मिस कंदा आयो। हन पर हाणी सिंधी प्रोग्राम बुधण जी राह में ईंदड़ सब मुश्किलूं आसान करे रयो आहे तव्हां जे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल। हाँ, यो मोबाइल तव्हां खे असांजा सिंधी प्रोग्राम बुधाए सघंदो दुनिया जे कंहिं बि कुंड में, दुबई में हुजो, स्पेन में, अमेरिका में या अफ्रीका में, हर जगह ते तव्हां ॿुधी सघंदा पंहिंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम। तव्हां खे करणो बसि एतिरो ही आहे त जीअं तव्हां ॿिया एप्स डाउनलोड कंदा आहियो, बसि ईअं ई प्ले स्टोर ते वञो ऐं सर्च वारी जॻह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज ऑन एयर ऐं उन खे इंस्टॉल कयो। इंस्टॉल कंदे ही तव्हां खे मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ई हेठि प्रसार भारती जो लोगो नज़र ईंदव ऐं तव्हां खे उन खे ओपन करणो आहे। ओपन कंदा त साम्हूं पहिरीं खाॿे पासे लाइव रेडियो ऐं साॼे पासे लिसन न्यूज लिखियल नज़र ईंदव। तव्हां लाइव रेडियो खे क्लिक कंदा त उते हिकु लंबी फहिरिस्त नज़र ईंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रनि जी। तव्हां खे उते ई सभिनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखियल पढ़ण में ईंदव। सर्च में तव्हां जीअं ई जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ॿ चैनल्स नज़र ईंदव, हिकु विविध भारती जयपुर यानी VBS ऐं ॿियो हवा महल छपियल नज़र ईंदड़ असांजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल। बस अची पहुतासीं सही जॻह ते। हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सभु प्रोग्राम ऐं सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं जो 12:10 ते। त सामिन ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गॾु।
1: साथियो हाणे अचो त प्रोग्राम में रेडियो जे खज़ाने जे तहत ॿुधूं भगत सुहिणी मेहर, भगत सुंदर ऐं पार्टीअ खां।

दसवीं जो प्रेम इश्क सो मेरे सा है सजे शहर में बदला नहीं पी है।

0: अने जाते कचो दिलो रखी बराबर हली वही हेडा मुजा सजण रात
1: सदा सिरी इश्क जी अंज में

0: दरवेश
1: लिखो
0: मन ही अश्को।

0: मुझा सजन पोती है मुझा यार दिलो जे को दिया सो दिलो वो बच्चो हां मुझा सजन को दिलो जे को सो भजी थियो
1: भजी जो ने मालूम
0: पर सुनिए जान भी परवा तो न कई जो तहु जो अश्क लगो जो मेहर सा
1: मेहर मेहर कर दियो
0: ने ए चली

कीअं मज़ो आयो न साथियो हीअ भगत ॿुधी करे भगत जेका आहे असांजी संस्कृति जी विरासत आहे साथियो भगत ॿुधाइण वारे संतनि सां गॾो गॾु घणेई संत अहिड़ा बि हूंदा हुआ जेके कलाम लिखंदा हुआ गीत ॻाईंदा हुआ तरीक़ो चाहे कुझु बि हुजे रुहानियत जी आवाज़ मालिक ताईं पहुचणु खपे हा न साथियो हाणे अचो त प्रोग्राम में

हींअर मां मोहन सागर जे आवाज़ में शाह अब्दुल लतीफ़ जी लिखियलु हीअ रचना ॿुधव। हाणे अचो त हिकु ॿियो कलाम ॿुधूं, उहो बि शाह अब्दुल लतीफ़ ई लिखियो आहे ऐं उनखे आवाज़ ॾिनो आहे हशू शहदादपुरीअ।

हिने रहा हशू शहदादपुरीअ जे आवाज़ में शाह अब्दुल लतीफ़ जो लिखियल हीअ कलाम ॿुधव ऐं हाणे साथियो इन कलाम सां गॾु ई असांजो अॼु जो प्रोग्राम इते ई पूरो थो थिए गॾो गॾु सिंधी प्रोग्राम बि पूरो थो थिए वरी गॾजंदासीं ईंदड़ विस्पति ते खणी हिकु ॿियो नओं प्रोग्राम त हमेशह ॿुधंदा रहो असांजा सिंधी प्रोग्राम ऐं हाणे वंदिता आहूजा जो नमस्कार बि क़बूल कंदा नमस्कार

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म आजा नच ले का ये गीत।

मोहित चौहान, शेखर रावजियानी और श्रुति पाठक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म अनजाना अनजानी का ये गीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मिथुन के स्वर में फिल्म सनम रे का ये गीत।

0: मिथुन के गाय फिल्म सनम रे के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चरण है। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिन्दुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार

0: इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं सुरभि बोहरा और सपना व्यास।

0: मेहरू महके माटी आपनी गूंजे मीठी बात आकाशवाणी रे मंच पे थारो घणो घणो सम्मान। घर आंगन समझ गयो आज फेर लेर प्रीत री रीत राम राम सा थाने सगला ने गावे खुशियों रागी।
1: बाजे हिये में बांसुरी सुनन अपनाए त्री बात था सगला बैण्या बिना अधूरी मारी बात। खम्मा घणी सा राम राम स्वीकार करो मारो कोड। घर आंगन री ई महफिल रो जग में कोनी कोई जोड़।
0: घर आंगन सुनन आली मारी सगली बैन्या ने माँ सुरभि वोरा रो
1: और माँ सपना व्यास
0: घणा घणा राम राम सा।
1: सुरभि आज तो ये पंक्तियाँ सुन ये लाग रही है कि सचमुच में अपने आकाशवाणी रे घर आंगन में केसर बिखर गयो है।
0: बिल्कुल।
1: और जेठे अपनाए त्री मारवाड़ी बोली हुए उठे तो रंग तो देखो नी चोखो ही जमे। तो चला आज आपा बात करा घर आंगन में बाता रो दोरो शुरू करा।
0: बिल्कुल सपना बहन, आज अपन बात कर सिया हिंदी साहित्य रे उन सूरज रे बारे में जिनरो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
1: बिल्कुल, आचार्य हजारी प्रसाद जब थे बात करी हो बे साहित्य

0: सूरज। हाँ, तो मने दो पंक्तियां याद आ रही है सुरभि
1: अच्छा।
0: बहन कि बे शब्द शब्द में प्रीत पिरोई, ज्ञान रो दीपक बाल्यो है, साहित्य री सुध बुध लेकर स्त्री रो मान संभाल्यो है, हजारी प्रसाद जीरी कलम कहवे, नारी कोनी कोई वस्तु साधारण, वो तो है शक्ति रो पूंज और शक्ति रो असली आभूषण।
1: बैनिया कितनी गहरी और फूटरी बात बोली सपना ने। बैनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो नाम हो जिनरे साहित्य में स्त्रियों ने केवल एक पात्र को नहीं समझो जातो बल्कि एक मर्यादा और गरिमा रे रूप में देखतो।
0: बिल्कुल सुरभि बहन, थे आ बात सही की हो कि हजारी प्रसाद जी को मानना हो कि स्त्री केवल पात्र को नहीं, वे एक महान गरिमा है। वे केमता की समाज तब तक ऊंचो नहीं उठ सके जद तक स्त्री उनरे असली हक और आत्म सम्मान बिना नहीं मिले। सुरभि बहन, थाने याद भी हुए लो के उनरो प्रसिद्ध उपन्यास बाण भटरी आत्मकथा याद है?
1: बिल्कुल बिल्कुल याद है सपना में। उनमें जी का निपुणिका और महामाया जो पात्र हा और बानी पात्र में द्विवेदी जी भी जमाने में बताया करा कि स्त्री सिर्फ घर री चार दीवारी तक ही कोनी, वो बुद्धि और साहस रो ओमेल है। और बे लिखता है कि स्त्री बा शक्ति है जो पतन री और जा रहे समाज ने थाम सके।
0: बिल्कुल बहने, द्विवेदी जी री जो स्त्री विमर्श आज रे विमर्श देखो घणो अलग और ऊंचो। बे मानता कि स्त्री मानुसी मानो चाहिए, मतलब वो है कि सुरभि बहन के उनने भी देखो सपना देखन रो हक है, फैसला लेवन रो हक है, आजाद रहने रो पूरो हक है। बे केमता कि जठे नारी रो अपमान हुए बैठे देखो विनाश तो निश्चित ही है संस्कृति रो। और जी हाँ, अपने संस्कृत माने केवा ही अपने भारतीय संस्कृति री आ पहचान के यत्र नारी सो पूजन ते तत रमन ते देवता, जठे नारी री पूजा हुए बट ते देखो भगवान ही वास करे तो, और जठे नारी रो अपमान उसी बट तो के संस्कृत रो विनाश तो निश्चित ही हुए।
1: बिल्कुल सपना बहन, द्विवेदी जी कहता के कलम सो निकलिया शब्द आपनी बहना ने बतावे है कि अपा ममता मई तो हाँ ही पर जरूरत पड़ने पर अपा रणचंडी भी बन सका। और उनरो साहित्य जी को हो और सिखावे है कि स्त्री सो त्याग उनरी कमजोरी कोनी, स्त्री रो जी को स्वभाव है वो कमजोरी कोनी, उनरी सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल सच्ची बात है सुरभि बहन। और आज घर आंगन में आपाए वही संदेश देवा कि हर बहन ने खुद रो वजू समझनो चाहिए। और हजारी प्रसाद जी ने तो हजारों साल पुरानी रूढ़िया ने तोड़ स्त्री रे गौरव बढ़ायो और आज आपा भी उनरी राह पर अपन ने चालनो चाहिए।
1: सपना बहन, द्विवेदी जी रे विचार सुनने लागे है कि समाज में बहनिया रो स्थान हमेशा ऊंचो ही रहो है, बस अपा खुद ने पहचानने री जरूरत है। तो बैनिया इन्हीं चर्चा ने अठे ही विराम देना चाहूँ और संकल्प लेवा कि अपा अपनी जी की गरिमा है और ज्ञान ने और ज्यादा आगे बढ़ा सा।
0: बिल्कुल सुरभि बहन, और ज्ञान और गरिमा बढ़ाते हुए आपा भी तो चला अपने कार्यक्रम रे अगले सुरीले गीत रे तरफ।
1: बिल्कुल।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सपना अबार अपन बात करी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी री साहित्य रे स्त्री विमर्श रे बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो नारी ने साहित्य में जितो मान दियो उतो कोई को नहीं दियो, पर आज री नारी तो खेल रे मैदान में भी आपरी धाक जमा रही है, आप रो नाम रोशन कर रही है, और आज तो फेयर प्ले डे है, यानी खेल में ईमानदारी और निष्पक्षता रो दिन। सपना बैंड खेल चाहे मैदान रो होवे या जिंदगी रो, नियम सबरे लिए एक बराबर होना चाहिए, है नी?
6: बिल्कुल साची बात कही हो। सुरभि बैंड थे खेल रो असली आनंद है नी, जिको जीत में ही कोनी हुए बल्कि सच्चाई सु खेलन सु हुए। जब आपा महिला खिलाड़िया री बात करा तो उना ने तो समाज री रूढ़िया और मैदान री चुनौतिया दोनों सु एक साथ लड़नो पड़े। और इनी बात पे देखो सुरभि बैंड, मने तो आज तो पंक्तियां ही पंक्तियां याद आ रही है कि मैदान जीतन सु पहली खुद रो मनड़ो जीतनो जरूरी है। ईमानदारी बिना तो बैण्या हर बड़ी जीत भी अधूरी है। नारी शक्ति जब उतरे मैदान में तो नया इतिहास बनावे है, निष्पक्ष न्याय मिले जदे तो वो जग पे छा जावे।
5: मैंने कितनी फूट रही बात कही सपना ने, है ना, कि खेल में निष्पक्षता यानी फेयर प्ले रो दिन रो असली मतलब वो है कि हर खिलाड़ी ने उनरी मेहनत और उनरी काबिलियत रे आधार पर आंकियो जावे। आज री आप अपनी छोरिया ने या फिर जिकी भी भाई बेटियां है बिया ने अगर कुश्ती रे मैदान में हुओ, क्रिकेट में हुओ या कबड्डी में हुओ, हर जगह आपनों और अपने देश रो नाम बेके ये रोशन कर रही हैं, और उनारे संघर्ष ही उनारी जीत है, उनारी असली जीत है।
6: बिल्कुल सुरभि बहन, और गौर करने वाली बात आ भी है कि आपना जी का एक खेल है सिर्फ मेडल जीतनो ही कोनी सिखावे,

0: वो तो आपने अनुशासन और हार ने पचावणो भी सिखावे। कई बार उवे ने सुदबी बहन के आपा हार जमा तो आपनो कई मन दुखी हो
1: जावे,
0: तो ई वास्ते आई केवे के आपने अनुशासन हार ने पचावणो उम्मीद मतलब आपन जी को खेल है वो सिखावे। खेल को मैदान है जिको जात पात ऊंच नीच ने तो दिखे भी कोनी, बट है तो बस ये केवे नी खेल रे मैदान में सिर्फ पसीनो और मेहनत बोलिया करे। जी हाँ आपा केवा नी फेर मारो बोई है कि पंक्तियां आ गई है, हिम्मत और पसीने रो कोई रंग और जात नहीं होवे, जो ईमानदारी सु खेले उनरी कदी मात नहीं होवे। महिला खिलाड़िया री ताकत ने अब सगली दुनिया जाने है, उना रे हौसला रे आगे अब आसमान भी हार जावे।
1: क्या बात है सपना बहन, एकदम सही बात की हो सपना बहन थे। और फेयर प्ले डे वे आपा ने ये समझनो चीजे कि खिलाड़िया ने सिर्फ मैदान में ही निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी बिल्कुल समाज में भी उन्होंने बराबर रो समर्थन और सम्मान दिलाना चाहिए। जी भावना सु अपा खेल रे मैदान में खेला तो भी भावना सु अपारे समाज में भी अपने पेश आना चाहिए। जी हाँ निष्पक्षता हुई, कोई बातचीत में अगर कोई गलत बात हो या सही बात हो बिना असली सु पहचानो और बियारे साथ में पक्षता निष्पक्षता रो पूरो फैसलो करनो। जब अपा घरा सु अपारी छोरियां खेलन खातर भेजिया, अगर अपने स्त्री ने खिलानो है या फिर भाभी बहुत बड़ी बात हुए कि अपन घर से बाहर निकल काम करने जा रहे हैं लेकिन अपारी जी की सखियां हैं या अपारी जी की बेटियां हैं बहन है बयाने खेलन वास्तर घर से बाहर भेज सा तो जद ही तो बे मैरी कॉम और मिताली राज बनर निकल सी।
0: बिल्कुल सही बात की हो। देखो बेणिया सुरभी बहन ने के और हजारी प्रसाद द्विवेदी वे भी तो कहनी शक्ति की बात कही, आज वे शक्ति खेल रहे मैदान में पसीनो बाहर खुद ने साबित भी कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: और खेल में देखो नी बहनिया ईमानदारी रखनो ही खेल री भावना है। अगर खेल में कोई बेईमानी आ जावे नी तो वो खेल खेल को नहीं रहे। इन वास्ते फेयर प्ले अपनो संस्कार होनो चाहिए।
1: बिल्कुल सपना बहन, अपनी इन बाता सु अपने सुनन वाली सगली बहनिया ने आ बात जरूर साची लागी होवेली और आगे जोश भी भर गयो होवेलो कि खेल अपनी जी को आत्मविश्वास हुए मन में जी को आत्मविश्वास है बिने बढ़ावे, क्योंकि खेल सु अपारा शरीर जी को है वो निरोग रहे है। खेल सु अपारे शरीर शारीरिक क्षमता रो भी विकास हुए और दिमाग में जी की अपारा आत्मविश्वास है, मन में आत्मविश्वास जगा हुए, दिमाग में जी का अपारा कई तरीके रा विचार हुए नी बिने भी खेल री भावना है जी का सही कर सके। और अपन ने एक निर्भय बनावे कि अपन ने की चीज रो डर को नहीं लग रहे हो, अगर अपन खेल री बात सु अपन खेल रहे हाँ तो साथ में अपना आत्मविश्वास भी बढ़ सी और अपन निडर भी बन सी जी का अपनी जिंदगी रे वास्ते बहुत जरूरी हुए। बस अपन ने आज रे दिन संकल्प लेवनो है, अगर अपन बात कर रहे हैं फेयर प्ले डे री तो अपन ने भी संकल्प लेवनो पड़ सी कि अपा खेल में और अपारे जीवन में हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी हुए जिको जीवन रो गहना हुए बहनो, तो ई गहने ने अपन ने बिल्कुल अपनानो है और ईमानदारी से अपा रह से है नी सपना बहन।
0: बिल्कुल कितनी अच्छी बात बताई है थे सुरभी बहनो, तो बेण्या खेलो कूदो और खुल रे जीवो अपनी जिंदगी के भाई जिंदगी देखो अपनी बहुत कहनी छोटी सी है बात तो केवनी नहीं चाहिए लेकिन बेनिया है अपनी जिंदगी है बिना मौज मस्ती जी यानी के जीती अपनी मौज मस्ती
1: मन जीता जी रहे हो
0: भाई अपनी हस्ती है देखो बस भी मस्ती में सु जीना चाहिए और क्योंकि स्वस्थ शरीर में के ऊंचो और स्वस्थ विचार वास करे। तो सुरभी बहन बेनिया रे ई जोश और ऊर्जा रे सागे ले चल अपन कार्यक्रम रे अगले गीत तरफ।
1: बिल्कुल

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: सुरभि बहन, खेल और सेहत री बात रे बाद में अब आप बात करा ऐसी शक्ति री जो आपने हर एक रे भीतर मायने छुपोड़ी है, बस उनने जगाने री जरूरत है। वो है नेतृत्व क्षमता, यानी लीडर बनन री शक्ति। और सुरभि बहन, कई लोग है वे सोचे है कि लीडर तो वो हुए जो राजनीति में जावे या स्टेज पर बड़ा बड़ा भाषण देवे, पर साची बात तो आ है नी कि अपनी हर एक रेडियो सखी है बा अपने आप में एक लीडर है।
1: साची बात कही सपना। एक बहन जत पूरे घर ने संभाले, मुश्किल वक्त में भी वो सबने हिम्मत देवती रहे और घर रा फैसला लेवे है, तो वो भी एक नेतृत्व हुए है नी।
0: बिल्कुल, और नेतृत्व मतलब हुए नी सब ने साथ ले चालनो और सही फैसलो लेना। तो आ बात सुनो मारी बेन्या कि भी नेतृत्व कोनी कोई पद या कुर्सी, यो तो है एक व्यवहार। हिम्मत सु जो कदम बढ़ावे वो ही जीते बीच मंझदार। खुद पे रखो अटूट भरोसो, सुपनों ने देव उड़ान। थारी शक्ति और थारो नेतृत्व थारी ही असली है पहचान।
1: वाह सपना, घनी ओजस्वी पंक्तियां हैं। सपना बहन तो आज अपने पंक्तियां ही पंक्तियां सुना रही है। पर कई बहनियां पूछे है कि सपना कि अपा तो घर में रहवा, तो अपा ने नेतृत्व क्यों करना पड़े, और ये नेतृत्व क्षमता ने अपा किया बढ़ावा। क्षमता हमारे अंदर हुए है, महालोगा रे अंदर में हुए, अपा एक गुण हुए, तो घर में रह अपा ये क्षमता ने कौकर बढ़ा सका, और उनारे लिए क्या कहना चाहो थे।
0: बिल्कुल सुरभि बहन, आ तो बात है बहुत चोखी कही हो। और देखो ये नेतृत्व क्षमता, देखो कोई बाजार में मिलन वाली तो चीज है कौन की, आपा बटन से उठा ले और आपा खरीद ली और अपने मतलब इस्तेमाल कर लियो भी चीज ने। हाँ। बात तो है कोनी, इनने धीरे धीरे विकसित करनो पड़े। तो सबसे पहली चीज है आपनो आत्मविश्वास। जब देर तक आपा खुद पे भरोसो नहीं करा तो समाज आपा पे भरोसो किया कर सी। और इन्हीं वास्ते अपनी बात ने मजबूती से कहनो सीखो। और दूसरी बात है सुनने री कला,
1: सही बात
0: जरूरी है। एक चोखो लीडर बोई हुए नी सुरभि बहन, जो दूसरी बात ने धीरे सुने और बिने समझे।
1: सपना बहन, लीडर बो हुए जो सगला ने साथ ले चले, सगला री बात सुने और पूरो भरोसो भी रे ऊपर सगली दुनिया जी की है भी पर पूरो भरोसो कर रही है। तो सपना मने लागे है कि पहल करनो भी घनो जरूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुरभि बहन,
1: चाहे मोहल्ले री समस्या हो या घर रो कोई मोटो काम हो, जब अपा पहल ही कोनी कर रहे, अपा कोई पहल करने री जिम्मेदारी कोनी ले रहा, तो वो नेतृत्व में किया सी, तो बीरे खातर जरूरी हुए है कि अपन जिम्मेदारी लेवा, बिसु अपरो नेतृत्व भी कही है निखर सी।
0: एकदम सही बात है सुरभि बहन। और सख्या नेतृत्व रो मतलब डराना या हुक्म चलावना तो हुए कोनी, नेतृत्व रो असली मतलब वो हुए प्रेरणा बनो। जब आपा कोई चोखो काम करा और थने देख चार ओर अपनी जी की बेन्या है बे काम करन लाग जावे, तो समझ लेनो कि थे एक लीडर बन चुकी हो। जो कहवे गेवे नी, राह देखन सु बेहतर है खुद एक नई राह बनाओ। मुश्किल सु डरो मत बेण्या, खुद री अलग पहचान दिखाओ। थारे भीतर छिपी है दुर्गा, थारे भीतर ही सरस्वती, थारे नेतृत्व सु ही बदल सी आपने समाज री आगति।
1: थारी बात सु तो सपना आज सगली रेडियो सखी ने आपरो आत्मविश्वास जिको है वो सातवें आसमान पर पहुंच गयो होगो। सच है, नेतृत्व रो विकास अपनी सोच से शुरू हुए। आज सु ही अपने अपनी झिझक ने छोड़ आगे बढ़नो है और आत्मविश्वास रे सागे जीवन री हर चुनौतियों ने पार करनो है। अगर अपा खेल में हा तो खेल में भी अपा ईमानदारी रखा, आत्मविश्वास रखा। अगर साहित्य रे की री पात्र री बात करा तो भी अपा अपने मन में आत्मविश्वास भी

0: हमें देखने को मिले पात्र में, तो भी पात्र ने अपा अपने जीवन में ढाल सका। क्योंकि अपा बात करी स्त्री विमर्श रे बारे में, अपा बात करी खेल रे बारे में, तो साथ ही अपा जी की बात कर रहा नेतृत्व री बात कर रहा, तो नेतृत्व में एक ग्रुप हुए, एक लोगों रो समूह हुए, भी महसूस कहीं हुए कि एक दो व्यक्ति जी का है बे अपने सागे लेर चालन री, आगे लेर जावन री, आगे री राह दिखान रो काम करे, तो बे लीडर ही हुए था। बिल्कुल सही बात कही सपना कि अपन कीरे ऊपर काम थोपनो को नहीं, या फिर नेतृत्व मतलब वो को नहीं हुए कि अपार ऊपर हुक्म चाल रही है, बे जी का है बे सगला सगला ने साथ लेर चाल रिया है, आपरी बात ने समझ रिया है, और आपरी बात जी की है बे आगे सु आगे लेर जावन रो प्रयास किया। कई काम हुए सपना बेन जद अपने नेतृत्व रो साथ लेनो पड़े, तो इन छोटी कई बातें हुए। आत्मविश्वास रे सागे साके अपने सत्य बोलनो भी चीजें, क्योंकि बाबी जी के नेता री एक क्वालिटी हुआ करे है नहीं सपना बेन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और साची कही बात सुरभी, तो बेण्या अपनी काबिलियत ने पहचानो और घर आंगन सु लेर बाहर तक अपनी नेतृत्व शक्ति रा जिका लोहा है बे मनवाओ। चलो अभी इनी जोश रह सागे आपा सुनो ओ सुरीलो गीतड़ लो, क्यों सुरभी बहन?
0: बिल्कुल।

0: Akashvani at 90.
1: सपना खेल कूद और मैदान री बात तो घनी फूटरी रही पर खेलन कूदन सु लायक टाबर जद जद ही बने जद उबारो शरीर जी को हुए नी वो मजबूत हो जावे। आज कल देखा कि मौसम बदलते ही टाबर बीमार पड़ जावे, मने तो घनी चिंता हुए सा।
2: और साची बात कही हो सुरभि बहन थे कि टाबर तो देखो अपने आंगन रा वो फूल है, कोमल फूल है, जिन रे बीमारियां सु लूल सु बचावनो अपने घनो जरूरी है। और इन रो सब सु मोटो और पक्को इलाज है अपन जिके अनिवार्य टीका है। तो बेण्या टीको सिर्फ सुई कोनी, वो तो टाबर रे सुखी जीवन रो सुरक्षा कवच है।
1: बिल्कुल सपना, कई बार पानी बहना सोच लेवे कि अबार तो ठीक है, फिर अस्पताल जार सुई क्यों लगवावा। अब बहना जी की आपने टाबर सु कई बार कही है कि लाड कोट घना करिया करे, तो लाड लाड में ही कह दिया करे कि टाबर रे सुई सु डर हो जासी, दर्द हो सी, बच्चो डर भी जासी। तो टाबरा ने कही करे कि मना कर देवे कि मैं बिना अस्पताल को नहीं लेट जा रहा और बीरे जी की सुई लगवानी है। पर आज सुई जी की लगवानी हुए नहीं बहना, वे बहुत जरूरी हुई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं भूल जावे कि अंधेरों हुवन सु पहली दिवलो जी को बालनो है नी बहुत जरूरी हुआ करे। अंधेरो समझ लो बीमारी ने और दिवलो बालनो मतलब बीरे बीमारी हुवन सु पहला बीने बीरी रोकथाम करनी। तो बीमारी सु पहली कहे टीको लगानो याद कर बहुत जरूरी हुआ करे। निरोगी बनाया करे बे टाबरो ने, और टाबर री सबसु मोटी माया है कि टीकाकरण ही उनरे जीवन री सुखद और ठंडी छाया है।
2: कितनी गहरी बात कर दी सुरभि बहन थे कि भी सखियो अपन ठाए कि जद टाबर जन्मे जद सु ही टीकाकरण शुरू हो जावे, जिये के पीलिया लगाना, टीबी रहो और पोलियो री दवा, ये सब उनरे उम्र भर री अपंगता और तकलीफ सु बचावन वाला है। जे आपा बखत पर टीका नहीं लगावा तो अपना टाबर रा भविष्य है जिको आपा जोखिम में डाल दिया।
1: बिल्कुल साची बात कही सपना बहन थे। अब यार कई दिन पहले मैं हमारे गांव गई, तो गांव में मैं देखियो कि भाई बठेरी ची की ANM बैनिया हुआ करे, GNM बैनिया हुए करे, वे घर घर आवे है। आशा सहयोगिनी ची की हुआ करे नी, वे घर घर आवे है और बठे कई कैंप लगावे जठे टाबरो रो टीकाकरण जिको है वो हुआ करे। तो सरकार सगला टीका मुफ्त में लगावे, तो मैं हमारी बैनिया सु बात करनी जरूरी समझ कि गांव में भी ऐसी सुविधाएं हुआ करे कि बे जार टीका लगवावे। और फिर भी अपने लापरवाही जिकियनी बा को नहीं करनी चाहिए, मने तो लागे है कि जानकारी रो अभाव है।
2: बिल्कुल, ई वास्ते कहणो थे जागरूक बनो और सखियो आपन जिको बेण्या फर्ज है आपने वो निभावनो चीजे। और बेण्या आज घर आंगन सु मारो और सुरबीर तो बस ओई कहणो है कि आप रे आसपास कोई भी टाबर है टीकाकरण सु वंचित नहीं रह पावे। जे टाबर स्वस्थ रहसी जदि वे स्कूल जासी और खेल रे मैदान में। आपा जी की अपार फेर प्ले री बात करी यहाँ उनरे मुमकिन बे कर पासी। इसी वास्ते और कहनी सुरभि बहन, बचपन सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित। तो अब आपा चला सुरीले गीतरी तरफ।

0: टिक टिक टिक टिक घड़ी री सुइयों इशारो कर रही है आपसू विदा लेवन रो, पर बातियां तो खूब होगी बहना, तो माने देवो सीख, माँ सुरभि बोरा
1: और माँ सपना व्यास ने घना घना राम राम सा।

0: Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस

0: बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
1: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश

0: कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में है। धीमी

0: के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर, और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। युगल स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, और फिल्म का नाम है शक्ति।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम में आप सुनिए शिव हरि के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने, और फिल्म का नाम है सिलसिला।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

कार्यक्रम में आप सुनिए। खयाम के संगीत निर्देशन में माया गोविंद का लिखा गीत को गाया है यशोदास ने और फिल्म का नाम है बावरी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है योगेश ने, गीत को गाया है किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है प्रियतमा।

किशोर कुमार के गाए फिल्म प्रियतमा किस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद, और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं।
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं, तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
1: ख्याल रखने वाला जी। है ना। विषय बता दें।
0: चलिए,
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम, यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा, आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें

0: बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये, बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे,
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है, और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं,
1: है सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: कचोटते
0: रहता है और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं शिवानी सोनी और विशाल आचार्य।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां होंगी ढेर सारी बातें, कुछ सवालों के जवाब, रोजगार सूचना और हाँ, कुछ गीत भी। इस सफर को मजेदार बनाने के लिए मैं हूं आपकी साथी शिवानी।
1: और मैं हूं विशाल। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई नया काम आया, कोई नया चैलेंज आया और उसे देखते ही आपके अंदर में आवाज आई, ना भावना, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, और हम बिना कोशिश किए ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं।
0: बिल्कुल विशाल, ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम किसी और के हराने से पहले खुद के दिमाग में ही खुद को हरा लेते हैं। हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब तो सुपर टैलेंटेड है, बस एक हम ही हैं जिनमें कोई खूबी नहीं।
1: सही कहा शिवानी, पर एक बात याद रखना, ईश्वर ने हर इंसान को एक यूनिक डिजाइन में बनाया है। जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीत सकते हो या नहीं? खुद को कम समझना बंद करो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो आप खुद भी नहीं जानते।
0: बिल्कुल, और इसी मुझसे नहीं होगा वाले डर को भगाने के लिए हमें अपने जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को शामिल करना चाहिए, वो है आत्मनिरीक्षण।
1: और दोस्तों, दुनिया आपको हमेशा अपने चश्मे में देखेगी, कोई अपनी जलन से देखेगा तो कोई अपनी पसंद से, लेकिन आत्मनिरीक्षण आपको वो असली चेहरा दिखाता है जो बिना किसी फिल्टर के है।
0: बिल्कुल, ये बात तो है विशाल, और आप खुद को जान लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ से छिन जाता है और आपके पास आ जाता है। फिर कोई आपको अपनी बातों से ना तो ज़्यादा खुश कर सकता है और ना ही दुखी।
1: और दोस्तों, जब हम खुद की कमियों और ताकतों को पहचान लेते हैं तो हम भीड़ चाल से बाहर निकल आते हैं। हमें पता होता है कि हमें कहाँ सुधरना है और कहाँ मुस्कुराकर आगे बढ़ना है।
0: तो साथियों, याद रखना, इस पूरी कायनात में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी शर्मा जी के बेटे या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से नहीं है। आपका मुकाबला कल वाले आप यानी आप खुद से है। खुद को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जब आप खुद की नज़रों से उठ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती।
1: और साथियों, अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा सेगमेंट क्विज सेशन का, जिसमें हम आपसे पूछेंगे दो सवाल जिनके सही जवाब पाने के लिए आपको बने रहना है कार्यक्रम के अंत तक। और आज का हमारा पहला सवाल है, नासा द्वारा वर्ष 2026 में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक मिशन का नाम क्या है?
0: और साथियों, इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल है, वर्ष 2026 के एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है?

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों, बचपन का वो दौर याद है आपको, जब हम गली मोहल्ले में क्रिकेट, गिली डंडा या छुपन छुपाई खेलते थे। चीटिंग होने पर हम तुरंत चिल्लाते थे, अरे ये तो बेमानी है, ये गेम का रूल नहीं है। याद आया कुछ? असल में वो बचपन की जिद ही निष्पक्ष खेल की पहली सीख थी।
1: बिल्कुल विशाल, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। किसी को गिराकर, चीटिंग करके या गलत रास्ता चुनकर जीती गई बाजी असल में हार से भी बदतर होती है।
0: शिवानी, खेल हो या लाइव, सबसे जरूरी है ईमानदारी, सामने वाले का सम्मान और नियमों का पालन करना। तो जैसे कि आज है 19 मई और आज पूरी दुनिया मिलकर बना रही है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, यानी वर्ल्ड फेयर डे।
1: तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि खेल दिवस तो सुना था, पर ये निष्पक्ष खेल दिवस आखिरकार है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जुलाई 2024 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के तहत आधिकारिक तौर पर 19 मई को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया।
0: इसके बाद पिछले साल यानी 19 मई 2025 को पहली बार इसे ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया में एक साथ मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसका उद्देश्य सिर्फ ग्राउंड पर खिलाड़ियों को नियम सिखाना नहीं है, बल्कि खेल की उस खूबसूरत भावना को जगाना है।
1: बिल्कुल साथियों, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा खिलाड़ी वो नहीं है जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो खेल की गरिमा को बनाए रखता है।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

है तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

0: जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: दोस्तों, हमारी भारत की इस पावन धरती ने ऐसे ऐसे महान नायकों, ऐसे ऐसे महावीरों को जन्म दिया है जिनकी कहानियां सुनकर हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। क्या तुम जानते हो, विशाल हमारे देश में एक ऐसी ही महान शख्सियत भी हुई हैं जो अपनी कलम से कविताएं भी लिखते थे और आगे चलकर इसी हुनर, सादगी और देशभक्ति के दम पर हमारे देश के 6ठे राष्ट्रपति भी बने।
6: शिवानी, जहाँ तक मुझे याद है तुम बात कर रही हो आदरणीय नीलम संजीव रेड्डी जी की। हम अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं उनके जीवन के उन पन्नों पर जिन्हें सुनकर आपको भी गर्व होगा। उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव इल्लूर में हुआ था।
5: और एक साधारण किसान परिवार जहां मिट्टी की खुशबू थी और दिल में कविताएं। लेकिन जब देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो तो एक संवेदनशील कवि घर कैसे बैठ सकता है। उन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में साल 1931 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
6: और दोस्तों, वे भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध, बिना किसी विरोध के चुने गए। यही नहीं, 64 वर्ष की उम्र में शपथ लेकर वे उस समय के सबसे युवा राष्ट्रपति भी बने। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने सत्ता का कोई लालच नहीं दिखाया। वे वापस अपने गांव लौट गए और फिर से खेती किसानी करने लगे।
5: बिल्कुल, और साथियों, और फिर 1 जून 1996 को बेंगलुरु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर आपके इरादे सच्चे हों और दिल में देश के लिए प्यार और जुनून हो तो एक किसान का बेटा और एक कवि भी देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता है।
6: वैसे दोस्तों, आपकी और हमारी बातचीत तो यूं ही चलती रहती है। आज हम आपके लिए एक वार्ता लेके आए हैं।
5: और साथियों, हमारी आज की वार्ता का विषय है आज का युवा और गांधी जी के दर्शन की सार्थकता, जिसकी वार्ताकार रहेंगी हमारी जूही जैन।
7: आज का युवा और गांधी जी के दर्शन की सार्थकता। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के उन विचारों और सिद्धांतों की जिनका प्रभाव आज के युवाओं पर कितना है और उनकी प्रासंगिकता कितनी है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल प्रमुख भूमिकाएं निभाई बल्कि अपने आदर्शों और विचारधारा से विश्व को भी प्रभावित किया। आज के युवा गांधी के विचारों को किस तरह समझते हैं और उनके जीवन में किस हद तक इन्हें अपनाते हैं, यही हमारी आज की चर्चा का विषय होगा। गांधी जी के जीवन के प्रमुख सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज और आत्मनिर्भरता शामिल है। इन सिद्धांतों का आधुनिक युग में क्या महत्व है और आज का युवा इसे किस प्रकार इन सिद्धांतों से प्रेरित हो सकता है, इस पर हम गहन विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सत्य की। गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सच बोलने

और उसे अपनाने का प्रयास किया। आज के युवाओं के लिए सत्य की क्या प्रासंगिकता है? आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर झूठ और अफवाहें तेजी से फैलती है, सत्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। गांधी जी ने जिस तरह सत्य को अपनाने जीवन का आधार बनाया, उसी प्रकार आज के युवाओं को भी सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः विजय की ओर ले जाती है। हमें यह समझना होगा कि सत्य का अनुसरण न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष लाता है, बल्कि सामाजिक में स्थायित्व और विश्वास का निर्माण करता है। अब बात करते हैं अहिंसा की, जो गांधी जी के दर्शन का दूसरा प्रमुख स्तंभ है। अहिंसा का तात्पर्य केवल शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हिंसा से भी है। आज के युवा इस सिद्धांत को किस प्रकार अपने जीवन में अपना सकते हैं? आज के युवाओं में जहाँ संघर्ष और विवाद सामान्य हो गया है, अहिंसा का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोलिंग से लेकर व्यक्तिगत जीवन में होने वाले विवादों तक अहिंसा का पालन शांति और संयम बनाए रखने में मदद करता है। गांधी जी का यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर। गांधी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का समर्थन किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और ग्रामीण भारत के विकास की बात की। क्या आज का युवा भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर आकर्षित हो रहा है? बिल्कुल। आज मेक इन इंडिया जैसे अभियानों और आत्मनिर्भरता भारत की पहल ने युवाओं को प्रेरित किया है। स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा नए नए उद्यमों की शुरुआत कर रहे हैं, जो गांधी जी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा से मेल खाती है। स्वराज की बात करें तो गांधी जी के लिए यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक स्वायत्तता थी का प्रतीक था। आज का युवाओं को समझना होगा कि सच्चा स्वराज तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसके कर्तव्यों का पालन करें। जी, स्वराज का अर्थ केवल अधिकारों की मांग करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। आज के युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने कर्तव्यों को समझें और उनके प्रति निष्ठा से कार्य करें। गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था शांति और सद्भाव का। उन्होंने हमेशा आपसी समझ और सहिष्णुता पर जोर दिया। आज के समाज में जहां असहिष्णुता और विभाजनकारी विचारधाराएं बढ़ रही है, शांति और सद्भाव की जरूरत पहले से कई अधिक है। युवाओं को यह समझना होगा कि शांति और सद्भाव के बिना समाज में स्थिरता नहीं आ सकती, लेकिन गांधी जी के इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के दर्शन आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, स्वराज और शांति जैसे सिद्धांत केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बना सकते हैं। आज के युग में जहां चुनौतियां अधिक है, गांधी जी के इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हमें इन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, ताकि हम सशक्त और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। सर्वप्रथम ये देखेंगे कि गांधीवाद क्या है। गांधीवाद एक गतिशील एवं विकासवादी जीवन दर्शन है। उसको किसी निश्चित सिद्धांत की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। लुई फिशर के शब्दों में गांधी जी एक स्वच्छंद और निर्वाग चिंतनधारी वाले व्यक्ति है। यद्यपि गांधीवाद किसी वाद विशेष की प्रति प्रतिबंध नहीं है, तथापि उसमें वे समस्त विशेषताएं हैं जो एक वाद के लिए आवश्यक है। गांधीवाद एक सुनिश्चित जीवन दर्शन है। सत्य और अहिंसा इस दर्शन का सार अथवा मूल तत्व है। जीव मात्र एक ही आत्मा व्याप्त है, यह सत्य है। इसका व्यवहारिक रूप प्रेम या विश्व बंधुत्व है, जो अहिंसा मूलक है। सिद्धांत रूप में जो सत्य है, व्यवहार रूप में वही अहिंसा है। सत्य निर्गुण रूप से और अहिंसा सगुण रूप है। दोनों एक ही परम तत्व के दो पक्ष हैं। अहिंसा का मार्ग प्रेम का मार्ग है, जो प्रेम पात्र से किसी प्रकार का प्रतिपादन नहीं चाहता। अहिंसा का पुजारी केवल बलिदान एवं त्याग करना जानता है। अनेक बाधाओं के बावजूद भी वह अपने मार्ग पर अविचल भाव से अग्रसर रहता है। इसी कारण वह सत्याग्रही है। सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसमें स्वार्थ सिद्धि का दुराग्रह लेश मात्र भी नहीं रहता है। वह तो केवल सत्यानुभूति के आग्रह द्वारा अनुप्राणित होता है। गांधीवाद में अहिंसा साधन और साध्य दोनों ही है। गांधीवाद विचारधाराएं महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है, जो उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई गई। गांधीवाद दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह एक परिश्रमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधी जी ने उजागर किया है, लेकिन ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में
निहित है तथा सर्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं

को विभिन्न प्राणोदायक स्रोतों जैसे भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव है। गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और खादी का बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर कार्य करना निरंतर जारी रखा। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य ही सदा विजय होती है और सही रास्ता सत्य का रास्ता ही है। आज मानवता की मुक्ति सत्य का रास्ता अपनाने से ही है। गांधी जी सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते थे। गांधी जी का मत था कि सत्य सदैव विजय होता है और अगर मनुष्य को संघर्ष सत्य के लिए है तो हिंसा का लेश मात्र उपयोग किए बिना ही वह अपने सफलता सुनिश्चित कर सकता है। सत्य, गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। सत्य उनके लिए सर्वोपरि सिद्धांत था। वे वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना का प्रयत्न करते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो राजनीतिज्ञ मंत्रीगण अपने पद की शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर करने के बावजूद भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटते। अपने कर्मों के पालन के समय वे सत्य को भी नकार देते हैं। अगर गांधीवाद सिद्धांतों का सही तरह से पालन किया जाए तो देश नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने चलेगा। अहिंसा, गांधी जी के अनुसार मन वचन और शरीर के से किसी को भी दुख पहुंचाना ही अहिंसा है। गांधी जी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। अहिंसा का अर्थ ही होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर मनसा वाचा कर्माण अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना पर बल देता है। आज के संघर्षरत विश्व में अहिंसा जैसे आदर्श अति आवश्यक है। गांधी जी बुद्ध के सिद्धांतों का अनुगमन कर इच्छाओं की न्यूनता पर बल देते थे। यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो आज राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्याकुल समाज व विश्व अपनी कई समस्याओं का निदान खोज सकता है। आज संपूर्ण विश्व अपनी समस्याओं का हल हिंसा के माध्यम से ढूंढना चाहता है। वैश्वीकरण के इस दौरान में वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा ही खत्म होती जा रही है। अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश हिंसा के माध्यम से प्रमुख शक्ति बनने की होड़ एवं दूसरे पर वर्चस्व के इरादे से हिंसा का सहारा लेते हैं। आज अहिंसा जैसे सिद्धांत का पालन करते हुए विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, जिसका आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार से अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों की सुनिश्चित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पीड़ता उपनिषद बुद्ध महावीर की शिक्षा अन्य महान दर्शनों में मिलती है। गांधी जी का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। उनके अनुसार शारीरिक प्रतिरोध करने वाले की उपेक्षा निकष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले से कई ज़्यादा साहस होनी चाहिए। आज गांधी जी के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, परंतु इसके साथ ही भी एक तथ्य ये भी, कुछ लोग उनके सिद्धांतों के प्रति शकालु और संदेहशील होकर ये तक कह बैठते हैं कि गांधीवाद विचारधारा अब संदर्भ के बाहर की वस्तु हो चुकी है। यही नहीं, कुछ तो उनके लिए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो अत्यंत ही खेदजनक है। विचारों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। विचार कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, उनका समाज में उपयोग कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ है। उनकी विचारधारा के प्रति एक उपेक्षित वातावरण तैयार हुआ है और उनको व्यवहार में लाने का प्रयत्न भी कम हुआ है। दरअसल आज गांधीवाद को भाव से गंभीरतापूर्वक समझने की ज़रूरत है। गांधीवाद सत्यानुभव पर आधारित है। वह शुद्ध बुद्ध आत्मा का दर्शन करता है।

0: है तथा जीवन में आध्यात्मिक एवं नैतिकता का प्रमुख स्थान देता है। इस प्रकार गांधीवाद हमको निर्भय होकर धर्माचरण का संदेश देता है। आत्म विकास के लिए मानव सदा से भय से मुक्ति और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता आया है। गांधी जी की कल्पना का राम राज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। उसका सर्वोदय आंदोलन उन्नति का संदेश देता है। गांधी जी का कहना था कि हमें उद्योग मानव प्रधान होना चाहिए, न कि मिशन प्रधान। वह मानव को व्यावसायिक इकाई न मानकर आध्यात्मिक प्राणी मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा तो बढ़ी है, परंतु मानव के श्रम का महत्व कम होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्पादन करे तो बेकारी की समस्याओं का अंत स्वयं ही हो जाएगा। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। इस प्रकार से देश को गांधीवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हृदय परिवर्तन द्वारा स्थायी विकास का मार्ग दिखता है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय था आज का युवा और गांधी जी के दर्शन की सार्थकता, और उसकी वार्ताकार थी जूही जैन।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों साहित्य का जादू भी बड़ा कमाल का होता है। यह जब किसी के दिल को छूता है तो इंसान के सोचने का ढंग बदल जाता है। साहित्य हमें जीना सिखाता है, हमें संवेदनशील बनाता है और समाज को एक नया आईना दिखाता है। जब हम कोई अच्छी कविता या कहानी पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है मानो वो शब्द सीधे हमारे रूह से बात कर रहे हों। यही तो है साहित्य का असली जादू, जो हम सबको एक अटूट धागे में बांध देता है।
1: बिल्कुल विशाल, और इसी जादुई साहित्य की दुनिया के एक चमकते सितारे को आज हम याद कर रहे हैं। आज हिंदी साहित्य के महान मनीषी आचार्य यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि है।
0: दोस्तों उनका जन्म 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, पर उनकी सोच एकदम इंटरनेशनल थी। जब वो लिखते थे ना तो इतिहास और आज की दुनिया को ऐसे मिक्स करते थे कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए।
1: बिल्कुल विशाल, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यासों से उन्होंने इतिहास को जीवंत कर दिया। अशोक के फूल और कुटज जैसे निबंधों के जरिए उन्होंने मानव जीवन को जीने की गहरी प्रेरणा भी दी।
0: और दोस्तों उन्होंने कबीर दास जी के व्यक्तित्व को समाज के सामने एक नए और सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। साहित्य में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया।
1: साथियों, मई 1969 को उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा था, लेकिन अपने शब्दों के रूप में वे आज भी हमारे बीच में अमर हैं।
0: दोस्तों वे केवल एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के एक महान संवाहक थे। भले ही आज द्विवेदी जी हमारे बीच नहीं है और उनका ना होना हमें बहुत खलता है, लेकिन उनकी किताबें उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी लाइफ में उदास हो ना, उनके लिखे निबंध पढ़ लेना, जिससे आपको मोटिवेशन का तगड़ा डोज मिल जाएगा।
1: विशाल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो?
0: क्या भूल रहा हूँ मैं?
1: हम भूल रहे हैं हमारे श्रोताओं को रोजगार सूचना देना।
0: हाँ, आज का हमारे रोजगार सूचना का समय तो हो चुका है शिवानी। वैसे
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों हम लेकर आए हैं युवाओं के लिए रोजगार सूचना। भारतीय सेना ने ग्रुप सी के अंतर्गत सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के 190 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
1: और इसी के साथ साथियों, इंडियन आर्मी में सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर पद के लिए अभ्यर्थियों से ऑफलाइन मोड में आवेदन ऑफलाइन आमंत्रित किए गए हैं।
0: दोस्तों 10वीं पास भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी लगने का शानदार मौका है।
1: और इसी के साथ साथियों, इंडियन आर्मी CABO भर्ती के लिए आवेदन 2 मई से लेकर 5 जून 2026 तक भरे जाएंगे।
0: और शिवानी, आज के हमारे क्विज सेगमेंट के आंसर देने का भी समय आ चुका है।
1: बिल्कुल विशाल, तो हमारा पहला सवाल था साथियों, नासा द्वारा वर्ष 2026 में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, आर्टेमिस मिशन।
0: दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल था, वर्ष 2026 के एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है? और उसका सही जवाब है जापान।

0: विशाल, तुम्हें पता है हमारी ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, हम अपनी धुन में मज़े से आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह कोई बड़ी परेशानी आकर सामने खड़ी हो जाती है।
1: शिवानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हंसते खेलते मौसम में अचानक आंधी तूफान आ जाए। और सच मानिए, बिल्कुल ऐसा ही हमारी सेहत के साथ भी होता है।
0: बिल्कुल, जब तक हमारा शरीर अंदर से मजबूत है हम हर दौड़ लगाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही काम के तनाव, खराब खान पान या भाग दौड़ की वजह से हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है।
1: और दोस्तों, बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर छोटी बड़ी बीमारियां चुपके से हमारे शरीर में घर बना लेती है। जब हम बीमार पड़ते हैं, खासकर तब जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला कर देता है, तब डॉक्टर हमें एक खास दवा देता है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक।
0: बिल्कुल, हमारे शरीर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बुरे बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, तब ये एंटीबायोटिक दवा एक जाबाज बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। ये अंदर जाते ही उन हानिकारक बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ कर मार देती है या फिर उन्हें बढ़ने से रोक भी देती है ताकि हमारा शरीर दोबारा से ताकतवर बन जाए।
1: और दोस्तों, यह हर मर्ज की दवा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें समझनी होगी, जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही हर

0: बीमारी की दवा अलग होती है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, यूटीआई या कुछ गंभीर इन्फेक्शन पर ही काम करती है।
1: अगर हमें सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी या फ्लू भी हुआ है जो कि वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, वहाँ ये बिल्कुल बेअसर हो जाती है।
0: और दोस्तों अक्सर हम क्या गलती करते हैं पता है, डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी, हमने 2 दिन खाई,
1: बिल्कुल
0: बुखार ठीक हुआ और हमने दवा बंद कर दी। दोस्तों यह गलती कभी मत करना।
1: बिल्कुल, और इसे ऐसे समझिए साथियों कि दुश्मन सिर्फ घायल हुआ था, मरा नहीं था। अगर आप दवा बीच में छोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया अगली बार और शक्तिशाली होकर लौटेगा और फिर उस पर ये दवा असर ही नहीं करेगी।
0: और दोस्तों मेडिकल की भाषा में इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए डॉक्टर जितने दिन कहे कोर्स हमेशा पूरा
1: तो
0: कीजिए।
1: दोस्तों, जिंदगी की परेशानियां हों या शरीर की बीमारियां, यही समय सही समय पर समझदारी ही हमें इनसे बाहर निकालती है। जब भी शरीर कमजोर लगे, आराम करें, अच्छा खाना खाएं और एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की पर्ची के बाद ही इसे खाएं।

0: घड़ी की सुइया कहती है, कहानी हर लम्हा है खास, यह समझना है जरूरी। बीत गए वक्त को हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए आज को जीकर मुस्कुराना है जरूरी।
1: बिल्कुल विशाल, और साथियों उम्मीद है हमारी बातें आपके दिलों को छू गई होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे एक ही संगीतकार पर।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और लोकगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे मुक्ता जैन और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य।

रात्रि 7:45 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से, और लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30 बजे से।

फिल्म संगीत आप पुनः सुनेंगे रात्रि 9:15 बजे से। गीत और गजलों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात 9:30 बजे से।

श्रोताओं के पत्र पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सुनेंगे रात 10 बजे से।

0: ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर

0: सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन के गाए

فیلمی گید. क्षमा करें, आज आप सुनेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए फिल्म गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम अमर अकबर एंथोनी। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम शोर, गीत लिखा है इंद्रजीत सिंह ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

संतोष आनंद के लिखे गीत को अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म शोर में। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए फिल्म गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम मिलन। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर संध्या के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितने अपने काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने का।
0: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल

उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया सेना प्रमुख ने यह बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया अस्पतालों स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पेयजल सुविधा प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में यह प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी और अब मौसम प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमा

0: पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव

केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहाँ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडो की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। CPS पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी की दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित

0: की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार रे साफ नीतियाँ राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावण सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी चियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करण रा हुकम दीना। व्यवहारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य में पिछाण करीजी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। ई मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगेरी सोच नीतियाँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेटों खनिज निकालवारा हलका माए घणो सुधार फियो है। वे कहो कि राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो कि राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हलका माए आ खनिजा री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ावन सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप माथे तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वे जनताओं अफवाहां माथे ध्यान नी देवन री अरज कीनी। इबीचे पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
2: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और

0: निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है और ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने अपने काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है, और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
1: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायतों पाछे नापतौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवनु मिल्या पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौरों फौजी सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक साग पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जिया सेमिनार में बोल रहा है। वे कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण, विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनु चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोणाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम मायकिनी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माय नवंबर 2025 माय दिया जया हुकम माय बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माय राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां, स्कूलां और दूजी ठोणा कुत्ता कानियो हमला करण रा वाकया रो हवालो देता थका पीठ कहो के हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनु पड़ सके है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाए ई परिवहन सेवावा और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए बताई जियो के अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा मुहैया करावन री ई जानकारी दी री जी। ऐ बसा चलावन सारू प्रदेश माए 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर व्यवस्थावां री जानकारी लीनी। वे स्टेशन परिसर माए साफ सफाई री व्यवस्था, पीवण रा पानी, प्रतीक्षालय और गाड़िया उभीकरण री ठौड़ समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीकी जायजो लीनो। DRM पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर न्यारा न्यारा टेसना माथे हिफाजत जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माए जनावरा री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चालन वाला CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। इनु घना जंगला माए पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई जा स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा ने मुजब आ नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका री निगरानी माए मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रे टीका लगा दिया गया है।

0: हम सुनिए सगला किसान बहन भाई ने अपनी बहन मुक्ता जैन
1: और आप रहे तालो साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा घना घना राम राम। मुक्ता बहन घना दिनों से आप मिलिया हो, देखो लाई बहुत पड़ रही है, ठीक है नी, तावड़ो तो ठाडो पड़ रही है और सगे सगे लुआ बाज रही है, तो जाप तो राख्या शरीर ताकि निरोग रहे वो टाबर भी जाप तो राखो।
0: अश्विनी भाई जाप तो घणो ही रखा और पानी री बोतल सागे रखा और मुंह ढकोड़ो रखा
1: और जरूरी है। तो खेती बाड़ी का काम तो देखो आप करता रहे वहाँ, और खेती बाड़ी माने देखो खेत में कई बार काम करा जाना अपन मालूम है कि खेत में दरखत जिका है बे दरखत सु आप ने क्या है कि थोड़ो छाँव मिले छिया मिला देना आप बड़े बैठ पर आप थोड़ो क्या है कि बड़े बैठ और काम भी बात कर ला रोटी पानी भी कर ला और ये चीज आप ध्यान रखा। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि दरखत आपने लगाना जरूरी है खेता रे माने दरखत तो वे देने काम रहा है और विशेष तौर से ऐसा दरखत जिका छियादार हुए जहाँ पे नीम है तो नीम छियादार भी है और सागे सागे भी निम्बोली हुए या भी सुतेल भी निकले वे भी काम में आवे
0: औषधीय पेड़ है। देखो नमामि भाई आप बात करा हाँ आज नीम लेपित यूरिया के बारे में जिकी आपानी आधुनिक कृषि व्यवस्था में किसान रे लिए बहुत ही चोखो साबित हुए है और इंगे सागे सागे इंगे जिका लाभ है नी वे भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और आपा देखा कि जिको आपानो भारत देश है नी वो एक कृषि प्रधान देश है और अठेरो जिको भी काम है आपानो जिको राजस्थान रो जिको एरियो है नी वो सूखो कहलाया करे जठे वर्षा कम हुए है और भूमि में जिकी उर्वरता है वह सीमित होया करे। तो किसान ने कही है कि आपकी आमदनी बढ़ाने वास्ते संतुलित जिका प्रबंधन है वे अपनाना पड़े है तो इन वास्ते नीम लेपित यूरिया है बिर उपयोग करें।
1: देखो भाई लोगा मैं आपने बताऊं कि यहाँ पर फसल है भी फसल है मायने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरत हुई पोषक तत्व रूप में मायने और उन वक्त किसान जिका है परंपरागत रूप से बीर माने जिको है यूरिया रो काम में लेवे पर सीधी यूरिया जब आप काम में लेवा तो बा कहीं या तो जमीन मान चली जावे वाष्पीकरण हो जावे या बा तावड़ से खत्म हो जावे तो भी वास्ते कहीं करना पड़े। यूरिया ने क्या है नीम रो जिको तेल हुए भी तेल सुलेपित कर दो तो भी सु कहीं जिकी बा नीम है नीम आधारित जिको पदार्थ है भी सु आप अगर लेपित करेड़ो हुए तो बहुत जल्दी सु कहीं वो गड़े को नहीं और जमीन मान रहे और होड़े होड़े होड़े होड़े वो क्या है कि आप प्रभाव दिखाते रहे। अब जहाँ राजस्थान है तो राजस्थान में गेहूँ है बाजरो है सरसों है चिणो है मूंग ग्वार जीरो इस सब गोड़ कपास हुए या गन्ना जड़ी फसल हुए इन माने यूरिया जिकी आप काम में लेवा बिना नीम लेपित अगर यूरिया है आप बहुत ज़्यादा प्रभाव देवे विशेष रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ खानी। तो अपन ये बात तो ध्यान रखना है कि नीम लेपित यूरिया काम में लेवा तो आपारी जिकी आमदनी है वह और बेसी बढ़ाई देसी।
0: और नमामि भाई एक बात हो रही कि नहीं जी हाँ किसान भाई यानी अगर आपकी मिट्टी रो परीक्षण करवा लेवेनी तो संतुलित मात्रा में बिंगू उपयोग कर सके है जिसको कही है कि बाकी खेती बाड़ी में उल्लेखनीय लाभन मिल सके।
1: तो अब आप संतुलित बात करा तो संतुलित गीत भी ले चला तो सुनो सा अब्दुल गनी रे गायडो गीतर लो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: तो मुक्ता बहन, देखो अब आप बात करें नीम लेपित यूरिया री। पर नीम लेपित यूरिया तो भी टाइम काम करे, जिसकी टाइम आप खेत रे माने फसल चक्र अपनावा। कई बार क्या हुए कि किसान भाई है, अधिक उत्पादन वास्ते अणुति यूरिया गाले, पर इसको कहीं हुए खेत खराब हुए। इसको आज क्या आवे कि आपा फसल चक्र अपनावा। भाई ई बार आपा फसल मान लो कणक री बाई ली, अगली फसल है मान लो आप जाइद री बाई ली, अगली फसल है मान लो चिणो बाई लियो, या आपा मान लो बाजरो बाई लियो। तो बदल बदल अगर आपा फसल लगावानी तो इन शू कहीं हुए कि फसल मायने बढ़ोतरी हो सी, क्योंकि जमीन जिकी है बा के आएगी एकदम बढ़िया हो जैसे।
4: न मम्मी भाई, देखो किसान अगर लगातार एक ही फसल बोते रहे तो मिट्टी भी बिंगी खराब हो जाए घर है, क्योंकि बार बार जिका मिट्टी का जिका पोषक तत्व है नहीं बे खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। इसको कहीं है कि बांग उत्पादन भी घटे, तो जरूरी है कि वह फसल चक्र अपनावे और बदल बदल मतलब फसला रो उपयोग करता रहे।
3: और सागे सागे आप भी है कि आप जहाँ जीमा जीमा जन एक एक चीज खाता रहे खाता रहे जी भी अमूजन लाग जाए, तो आप आप प्रकृति है, प्रकृति ने एक एक तरह के सुकरा तो अभी आपारे नुकसानदायक हुए है, नुकसानदायक हुए। तो अबे आपने देखा एक चीज और, मैं आपने बताना पूछी मैं शुरू में आपने कहे कि उन्हाड़ो बहुत पड़ रही है और उन्हाड़े माने तावड़ो भी तातो पड़ रही है, तो आपने आप जाप तो राखनी है, पर सागे सागे अपना पशु है बारो भी जाप तो राखना पड़ सी, पर किया राखा ककर राखा ए सामान्य जानकारी ले रही है डॉक्टर एस पी जोशी सु और

0: जानकारी ले रही है प्रमोद कुमार शर्मा।
1: श्रोताओ नमस्कार, आज हमारे स्टूडियोज में आए हैं डॉक्टर एस पी जोशी, ज्वाइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बीकानेर। आपको मैंने खास तौर से बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि आप हमें अनुग्रहित करें उन किसानों के लिए, उन खेतीहर लोगों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो पशुपालन करते हैं। इस गर्मी के मौसम में पशुओं को गर्मी से कैसे बचाएं और उनका उपचार कैसे हो, इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर जोशी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो विषय लिया है वह विषय इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आकाशवाणी बीकानेर को इस बारे में धन्यवाद है कि उन्होंने आज के संदर्भ में जो भी ज्वलंत समस्या पशुपालन की है उसको उन्होंने उठाने के लिए मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं ये चाहता हूँ कि सभी पशुपालक इस संबंध में अपना ज्ञान, हालांकि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो उपाय और उसके उपचार के तरीके हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दे, तो आपके पशु का न तो गर्मी से नुकसान होगा और न ही आपके पशु का दूध भी कम होगा।
1: डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं कि कैसे पता चलेगा किसान को या खेतीहर मजदूर को कि उसका पशु जो है वो तापघात का शिकार हो गया, क्या लक्षण प्रकट होंगे?
2: इस संबंध में सबसे पहली बात ये है कि आपका पशु जो है वो खाना पीना चरना कम कर देगा और उसकी सक्रियता बिल्कुल कम हो जाएगी, और एक दिन बाद 24 घंटे बाद आपको लगेगा कि पशु जो है वो दूसरे पशुओं से अलग तरह से दिख रहा है। और जब अपन उसका तापमान लेंगे, हाथ रखेंगे शरीर में, तो उसका शरीर हमें जलता हुआ सा मतलब गर्म दिखेगा, और गर्म शरीर पे जब हम अगर थोड़ा बहुत पानी डालेंगे तो उसको अच्छा लगने लगेगा, मुंह से लार भी टपक सकती है। और भैंसों में तो इस मामले में एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन वो मुंह से बहुत तेज़ सांस लेने लग जाती है, और अमेरिकन गाय का मतलब होता है साहब संक्रमित, क्रॉस ब्रेड गाय का भी ये स्थिति है कि वो गर्मी सहन नहीं कर पाती तो जोर जोर से मुंह से सांस लेती है। यह उसका प्रथम लक्षण पशु के मालिक को पता लगता है कि मेरा पशु हीट ताप से संक्रमित हो रहा है।
1: जैसे ही ये पता चला कि हमारा पशु तापघात का शिकार हो गया है, उसके बाद सबसे पहले किसान को क्या करना चाहिए?
2: जैसे ही उसको पता लगता है कि तापघात का शिकार हो गया है, उसको सबसे पहले दूसरे पशुओं से उस पशु को अलग करके ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां जो सामान्य वातावरण का तापक्रम है उससे 5-6 डिग्री तापक्रम कम हो। उस कम तापक्रम में पशु को सबसे पहले तो सुबह और शाम दो बार ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके सर के ऊपर एक ठंडा कपड़ा पानी का भिगोया हुआ रखें, और उसको अगर कूलर की व्यवस्था हो सकती है तो कूलर, और नहीं तो पंखे के नीचे उसको जरूर रखें।
1: जी, ये आपने बताया कि उसको क्या सावधानियां करनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है कि कुछ पशु तो तापघात के शिकार हो जाते हैं और कुछ पशु नहीं हो पाते, तो क्या उनमें क्या कमी होती है जिन पशुओं में वो शिकार हो जाते हैं? जो
2: तापघात से शिकार के लिए, ये बात एक बहुत सही कह रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया देसी गोवंश जैसे राठी, गिर, साहिवाल है, वो तापघात से बहुत कम बीमार होती है, उनमें तापघात सहने की क्षमता अधिक होती है, और जो संक्रमित पशु है क्रॉस ब्रेड वो तापघात को सहन नहीं कर पाती क्योंकि वह ठंडे प्रदेशों में रहने वाली होती है। जो ठंडे प्रदेशों में जो पशु रहता है वो 35 डिग्री से ऊपर तापक्रम आते ही उसको ऐसा लगता है जैसे गर्मी के हो गए, और अपने यहाँ तो 45 डिग्री से ज़्यादा तापक्रम चल रहा है, तो उस 45 में तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ भैंस भी एक ऐसा पशु है जो कि तापक्रम को सहन नहीं कर सकता। उसका कारण है कि भैंस की त्वचा का ये स्थिति है कि उसमें जो सूर्य से किरण आती है, ऊष्मित किरण, वो सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसकी वजह से वह ताप

0: बात का जल्दी शिकार हो जाती है।
1: अच्छा जी, परंतु सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो पशु है वो तापघात का शिकार कैसे किस तरीके से होता है, मतलब क्या बार धूप में निकालने पर या बार बांधने पर?
0: पशु तापघात का शिकार जब होता है, जब पहले तो आज के इस तापक्रम में 45 से 46 डिग्री में हम पशु को खुला बाहर छोड़ देते हैं।
1: जी जी
0: खुला बाहर मैदान में छोड़ने से अगर आप कमरे का तापमान और बाहर का तापक्रम लेते हो तो 3 डिग्री तो वैसे ही फर्क पड़ता है। खुले वातावरण में जहाँ पे छाया भी नहीं है और पशु अगर विचरण करेगा तो नीचे से ज़मीन भी गर्म होगी, ऊपर से सूर्य की किरणें भी गर्म होगी, तो पशु तापघात का शिकार जल्दी होगा। और दूसरा ये है कि जब पशु बाहर निकलेगा तो हो सकता है उसको पानी पीने का भी कहीं पर ना मिले। जब पीने का पानी भी उसको दिन में 3 बार नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो पशु तापघात का शिकार हो जाएगा।
1: क्या तापघात का शिकार होकर के दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनको भी शिकार करवा सकता है क्या वो
0: नहीं, ये ऐसा कुछ
1: संक्रमण?
0: ऐसा रोग संक्रमित रोग नहीं है जिससे कि एक पशु का दूसरे पशु में कोई लार से या कॉन्टैक्ट से हो जाता है। तापघात का शिकार वह पशु होगा तो उस पशु के लक्षण दूसरे पशु में नहीं आएंगे अगर वो पशु सही ढंग से दूसरी जगह रखे हुए हैं।
1: अच्छा जी, तापघात का शिकार हो गई, जैसे हमारी गाय है मान लो तापघात की शिकार हो गई, उसके बाद उसका दूध वगैरह निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए?
0: इसमें तो शर्मा साहब कोई भी समस्या ही नहीं है। तापघात का शिकार छोड़ के अभी तो मैं आपको एक छोटी सी बात और सलाह देता हूँ कि बहुत से लोगों में ये कंसेप्ट है कि पशु के हिड़किया रोग हो गया, रेबीज, और उसका हमने दूध पी लिया तो साहब हमारे क्या होगा। बात सही है, अगर पता लगता है तो हिड़किया रोग का दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपने पी भी लिया तो भी आपको इसलिए नुकसान नहीं है कि अपने जो भी आसपास का क्षेत्र है उसमें दूध को उबाल के पिया जाता है। जब दूध को उबाला जाता है तो उसमें किसी भी तरह के कोई भी संक्रमित वायरस और बैक्टीरिया नहीं होते हैं। और तापघात वाले पशु के लिए तो दूध का ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब तापघात हो जाता है तो पशु में दूध की मात्रा आधी से भी कम हो जाती है, जिसका पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।
1: जी, अब हम आते हैं, अगर तापघात का शिकार हो गया पशु तो उसके बाद उसको बचाने का अभियान शुरू हो जाता है कि मरे नहीं, ये इसकी गुणवत्ता कम नहीं हो, ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो जाए, इन सब बातों पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे?
0: जिस पशु के तापघात हो जाता है उसको पहला तो मैंने आपको बता दिया कि चीनी और नमक का घोल, साथ में अगर नींबू भी मिल जाए तो आपको पिलाना चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तापघात वाले पशु को ठंडी जगह रखें, और ठंडी जगह रखने के बाद अभी एक मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बचाव का तरीका पहले और बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई पशुओं में बचाव के तरीके ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उपचार से, क्योंकि बचाव से क्या है कि पशुपालक का खर्चा कम हो जाता है। अगर चिकित्सकीय उपाय आएगा तो पशुपालक का खर्चा बढ़ेगा जिससे उसको आर्थिक हानि भी होती है। तो सबसे पहला तो ये है कि पशु का जो बाड़ा है वह बाड़ा ऐसा होना चाहिए, अगर आपके छत टीन सेड है या पक्की है तो उसके ऊपर आपको घास फूस का डाल देना चाहिए और उसको दिन में एक बार पानी से भिगो देना चाहिए, जिससे आपके नीचे का तापक्रम 5 से 7 डिग्री कम होगा तो तापघात के चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस दीवारों को भी आप गीला कर दें। एक क्या है कि अपन ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज़ देखते हैं कि पशुओं का जो रखने का जगह है वो 6-7 फीट हाइट पे ही रखते हैं। 6-7 फीट हाइट पे रखने से क्या होता है कि 4 फुट का 5 फुट का तो करीब पशु होता है
1: जी जी,
0: और 1-1.5 फुट ज़्यादा हो तो वो हीट के ज़्यादा टच में आता है। तो पशुपालक को ये करना चाहिए कि उसकी छत कम से कम 10 फुट होनी चाहिए। 10 फुट छत होने से हीट का दबाव कम होगा तो पशु तापघात से वैसे भी बहुत कम संक्रमित होगा। बात आई है अब अपन उसको अगर हो गया तो क्या करें। अब सबसे पहले तो उसके लिए ये है कि आपने नमक चीनी का घोल पिलाया। दूसरा एक मैं बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय आपको बताता हूँ जो जिससे आपका दूध भी कम नहीं होगा और आपके सस्ता सुंदर काम होगा। घरों में जब अपन कली करते हैं तो कली जो है वो कैल्शियम का बड़ा सोर्स होता है। पशु पालक रात को 4-5

0: किलो कली जो कि 100 रुपए भी नहीं लगते हैं, अपने एक घर में बड़े ड्रम में, अगर ज़्यादा पशु हो तो ड्रम में भिगो दें, दो तीन पशु हो तो मटकी में भिगो दें, रात को भिगो के उसको छोड़ दें, और सुबह 8 बजे 9 बजे जब उसको समय मिले, उसके ऊपर का पानी जिसको अपन कहते हैं ना नितारना, उसके ऊपर का पानी जितने भी पशु हैं उनको एक एक लीटर दो दो लीटर पिला दें, वह पानी कैल्शियम का इतना बड़ा सोर्स होगा कि कैल्शियम पशु को ठंडा भी रखेगा। प्लस दूध जो एक अपन बात करते हैं, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और पानी होता है, तो आप उसको कैल्शियम की मात्रा भी पूरी कर रहे हो, पानी की भी पूरी कर रहे हो, तो आपका दूध उत्पादन भी कम नहीं पड़ेगा। तीसरा, अगर हो गया है तापघात आपके, तो आपको सबसे पहले उसको अपने घरेलू उपायों के साथ साथ चिकित्सक से भी आपको परामर्श लेना पड़ेगा। चिकित्सक परामर्श में पहली पॉइंट ये आता है कि आपको फिर उसको 4-5 लीटर ग्लूकोज की बोतल, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन या रिंगर्स लैक्टेट भी बोलते हैं, जिसमें जो पशुओं के पसीने के साथ में लवण निकलते हैं वह लवण उस बोतल्स में होते हैं, उससे पशु एक्टिव हो जाता है। साथ में हम इसमें मल्टी विटामिन का मतलब है कि पशु जब तापघात से होगा तो उसमें हर चीज़ की कमी आएगी, तो मल्टी विटामिन का इंजेक्शन अगर लगा के करते हैं। एंटीबायोटिक का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कई लोग ऐसा है कि एंटीबायोटिक भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगाते हैं, काफ़ी महंगा, उसका तापघात में बड़ा रोल नहीं है। हल्का एंटीबायोटिक भी आप लगाते हैं तो तापक्रम में। छोटे पशुओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और इसमें एक आपको बताना चाहूँगा, मई और जून में जो भी अपने अंग्रेजी या संक्रमित गाय क्रॉस ब्रेड है
1: जी
0: उनके पशुओं को एक ऐसी बीमारी लगती है जिसके थिलेरियसिस कहा जाता है। थिलेरियसिस से छोटे पशु लगभग 90% मर जाते हैं। अगर किसी पशु के टोगड़ी पैदा हुई और वो गाय बनी तब पशुपालक को विशेष फायदा होगा,
1: जी जी
0: अगर वो पहले से ही महीने 2 महीने की हुई मर गई तो पशुपालक के लिए वो ब्यांत आधी होगी। उसके लिए हम ये कहते हैं थिलेरियसिस में कि एक बुपा पारविन करके इंजेक्शन आता है, जो भी संक्रमित गाय है उसके बछड़े और बछड़ी को आपको बचाना है तो आप 1 ml इंजेक्शन बुपा पारविन का उसके 3 दिन लगवा दें, आपका पशु सुरक्षित रहेगा। ये पशुपालकों को बहुत ज़रूरी है। अब इस बीमारी के लक्षण की बात आती है, इस बीमारी में लक्षण में ये है कि आप जब पशु को देखते हैं तो पशु का टेम्परेचर 105 107 तक चला जाता है और एकदम निढाल पशु हो जाता है। छोटी उम्र में वैसे भी यही हालत होती है। आपको उसके चारों जो लिम्फ नोड है जब आप पालपेट करते हो तो गांठ जैसी दिखती है, इसका मतलब वो उस बीमारी से ग्रसित हो गया है। अपने उसको बचाने के लिए बुपारविन और एंटीबायोटिक लगा दो, 3 दिन में वो पशु ठीक होगा। पशु वो जब बच्चा ठीक होगा तो गाय भी अच्छा दूध देगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इस बात पर कि जो उपचार है उसमें कुछ लोग डॉक्टर की सहायता नहीं लेते, वे अपने स्तर पर ही उपचार करते रहते हैं देसी तरीकों से, वो कहाँ तक ठीक है?
0: पशुओं में बचाव ही उपाय है पहला, और उपाय ही उपचार है। आज के संदर्भ में पशु बहुत महंगा हो गया है। अब वो बात नहीं है कि किसी आदमी के पास में 10-10, 20-20 पशु घर में रखने लायक हो, क्योंकि अच्छी गाय भी 60-70 हज़ार से नीचे नहीं आती है और भैंस भी 1 लाख रुपए में आती है। ऐसी कंडीशन में अगर अपन ने घर में ही उपचार किया और उस पशु का नुकसान हो गया तो पशुपालक को आर्थिक हानि होगी।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने हमें दी। उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी पशुपालक भाई भाई हैं, किसान जो खेती और मजदूर हैं, वो अपनी पशुओं की रक्षा कर पाएंगे। और बाकी तो हम सब ये दुआई करते हैं कि गर्मी का एक कहर कम से कम टूटे हमारे लोगों पर, हमारे पशुओं पर। और आप आए स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर SP जोशी सर।
0: धन्यवाद शर्मा साहब।
2: तो सब बहुत ही फूटी सी जानकारी दी आपने, पशुओं को गर्मी से कैसे बचाएं, और जानकारी दे रहा डॉक्टर SP जोशी, और आंसू जानकारी ले रहा श्री प्रमोद कुमार शर्मा। तो डॉक्टर साहब बहुत ही फूटी सी जानकारी दी। अब आपा सुना एक मीठो सो गीतड़ लो।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर।

0: आकाशवाणी, जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
1: तो नमामी भाई, अभी आप बहुत ही फूटरसो गीत सुनियो, जंगल मंगल देश, अब्दुल सकुल सुलेमानी डो गायडो। और नमामी भाई, आपा देखा कि आपने जी का समाज में कई लोग ऐसा है जी का अनेक तरह जी की बांगी अधिकार हो या करनी भी वंचित रहे वे, और ना तो बांगो कोई ठिकानो हुए, ना ही बांग कोई जगह जमीन हुए, ना ही बांगा कोई अधिकार हुए। तो इन प्रकार का लोगों वास्ते भी जिको अनेक तरह की योजना है, अनेक तरह का कार्य हो रहा है, तो आप बांग बारे में मन थोड़ो बताओ।
2: देखो सा, अपारे जिका कई विस्तृत घुमंतु है या अर्ध घुमंतु है, या गाड़ी अलवार हो रहे या करे या दूजा लोग हुए, बे क्या है कि आप काम धंधे रहे सारो इन्नर बिन्नर घूमता रहे, लेकिन बारे भी टाबर टिंगर है, बारो भी परिवार है, सरकारी सोच आ रहे हुए कि बाने क्या है कि एक स्थायी आवास देवा, भूमि रो अधिकार देवा, ताकि बारी सामाजिक पहचान बने। नहीं तो बे क्या है भी सामाजिक पहचान सो एकदम ला रहे जावे, चाहे बे गाड़िया लुआ रहे, चाहे बे नट हुए, चाहे कालबेरिया हो, बंजारी हो, तो जितनी भी जातियाँ हैं, तो बारे वास्ते सरकार क्या है।

0: कि पट्टा वितरण करे, यानी घर थाने में जमीन दे रिया हो, बिरो पट्टा दे रिया हो, थे बिर माथे रुको, बड़े जीवन यापन करो। और बढ़िया तरीके से क्या है कि थे टाप रहने पटाओ। देखो आज युग रमाना आपने ठाए 21 एरे तह शिक्षा अधिकार है, और शिक्षा अधिकार तो हर टाबर ने शिक्षा लेना अधिकार है, फिर भी थोड़ा टाबर ने ठीक है काम आप जगह है पर शिक्षा आप जगह है, तो वो कद दोषी जब थे क्या है स्थायी रूप से रह सो, स्थायी रूप से रह वाला तो थाने आधार कार्ड भी बनसी, राशन कार्ड भी बनसी, जन आधार कार्ड भी बनसी, या बैंक रो जो लाभ है, या फिर पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे बा दूसरी जी की पेंशन करे कोई, अगर कि लुगाई रो मिनक चाल तो रहे हो तो बीरी बीज की पेंशन है, भाभी मिले, मतलब हर तरह सुविधा है, बाका दोला जब स्थायी हो से। और सरकार आज सरकार है सोच आई है कि बा सबने जमीन देवे, और जमीन खाली जमीन नहीं बल्कि पट्टे सागे जमीन देवे,
1: इंगे सागे सागे बने, मतलब एक मतलब बन आधार मिल जाएगा बंग सम्मान भी को समाज में नहीं सम्मान भी बनियो रहे सी। और इंगे वैसे कहीं भूमि मिलने सुबह कहीं आपके कोई व्यवसाय ने भी आगे तोड़ सके, और महिलाओं के नाम पर या अनेक तरह का मतलब अन अधिकार मिल सी, और बांग एक जिको जीवन स्तर है नहीं वो सुधर सी।
0: तो अबे आपने गीत खाने लिए चलना पाछा, चलो साओ गीत।

0: तो सा सिंजारी बेड़ा होगी है और अबे आप सो सीख लेवनो बखत हो के आप अपना हितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और आप प्री बेन मुक्ता जे नाग्य दिराउसा गणान गणा राम राम, राम।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 7:45 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सुनते हैं पंकज उदास की स्वर में ये रचना।

सुगम संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में ये रचना।

स्वाति नाटे करके गए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत यशुदास और हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम जब दीप जले आना।

0: महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म तकदीर में। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। फिल्म पाकिजा में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में।

उनके धारो

0: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म अमर प्रेम में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में सुनते हैं ज्ञानेश्वरी शर्मा की आवाज में ये गीत।

लोक संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं बाबू खां भाकर की आवाज में ये लोकगीत।

लोक संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कालूनाथ और साथियों की आवाज़ में ये गीत।

0: कालूनाथ पार्टी के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4

0: गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026

0: इसकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

0: आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.

जहरीला इंसान। इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार को, आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी को। फिल्म बीबी ओ बीबी में।

फिल्म तीसरी कसम में मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत गजलों का ये कार्यक्रम। सुनते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही गजलों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में आज भी ढेर सारे पत्र हमें मिले हैं। कोशिश करेंगे सभी पत्रों को हम शामिल करें। आपकी फरमाइश पर सुनेंगे आप सभी गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, पसंद आप सबकी।

मेरे जीवन साथी। इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार को। इस गीत को सुनना चाहते थे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, बाबू रियांश ठाकुर। इसी ही गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा था छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक वर्मा और यादवेंद्र कुमार वर्मा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और शोभा नायक और उनका पूरा परिवार। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई, सुनैना और उनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम वासना।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। इस गीत को सुनना चाहते थे गांव लखासर से भगवान सिंह, जेठू सिंह, मूल सिंह और उनका पूरा परिवार। इसी ही गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा था श्री डूंगरगढ़ से जगदीश गुजर, भवानी सारस्वत, अनिल हरिशंकर पुरोहित, महेश राजोतिया, पवन इंदौरिया और उनके सभी साथी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, शाहिल, दौलतबाग मुरादाबाद से गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। ये पत्र हमें मिला है गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर।

राजस्थान से हमारे श्रोता हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत बड़वाल, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा, पाल मिस्त्री, राजा बाबू और उनके सभी साथी। सुनते हैं आप सबकी पसंद का कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम पालकी।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

फिल्म तुम्हारे लिए मैं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री। इसी गीत को सुनना चाहते थे श्री कौलाय जी से फूसराज सोनी, सूरज प्रकाश सोनी, धर्मेंद्र घुटिया, लाला और सुनद सोनी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। आचार्य चौक बीकानेर से गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है अशोक आचार्य, मनोज भंवरलाल, जवाहरलाल, ओम प्रकाश बोड़ा, रामेश्वर परमेश्वर, राजा बबला आचार्य और पेंटर नवीन ने। ये पत्र हमें गांधी चौक रोपड़ से मिला है। हमारे नियमित श्रोता हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक। ये पत्र लिख भेजा है कनली ढाणी गांव टापू से बिस्नाराम बलियाण, बिदामी देवी बरवड़, ओमी बलियाण, तारा बलियाण, सुनील, पूजा, सुरेश, सुभाष और उनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम राम और श्याम।

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं और श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं, निश्चित ही हमें पत्र लिख भेजें और सुने।

अपनी पसंद के फिल्म गीत। हमारा पता है आपकी पसंद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल। आप जरूर लिख भेजें पत्र और सुने अपनी पसंद के फिल्मी गीत।

सलमा आगा को अभी आपने सुना फिल्म निकाह में। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा था छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शावले पाटिल, राजदीप राशि और श्रीमती शीतल पाटिल ने। इसी ही गीत को सुनना चाहते थे सम्राट चौक सिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, आरव देशमुख, अश्विनी मौसमी और जी आर देशमुख। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है रामपुरा बस्ती बीकानेर से रमजान अली लखारा, कुलदीप सिंह गिल, अमन गिल और फूसाराम छबीला ने। जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से ही गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही ने। राजासर गांव से ही गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है महावीर पुरोहित, जगदीश सरस्वती, लाली और मंजू ने। सुनते हैं आप सबकी पसंद का कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म का नाम चिराग।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वाहिदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पंवार, खातून बेगम और जोया। इसी ही गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा था मोमा सरवासरी डूंगरगढ़ से मोहम्मद अकबर पंवार, मोहम्मद असकर पंवार, राबिया मुन्नी, बरकत हाजन, गुलजार अजीज और असकर भाई ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है सेक्टर 3 पवनपुरी बीकानेर से भवनलाल सोनगरा, गीता रानी, राज सोनगरा, मनोहर लाल सोनगरा, बीएल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दाइमा, सरोज, सत्यनारायण, अखिल, सीताराम पंवार, दीपू पंवार, मूलचंद सोनगरा, सुनीता, प्रथम राज, हंस राज, कृष्णा, मुकेश सोनगरा, सावित्री, आशीष, जतिन सोनगरा और उनका पूरा परिवार। शमसुद्दीन की बाड़ी अमर सिंहपुरा बीकानेर से ही गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है सिकंदर अली खां और उनके सभी साथियों ने। सुनते हैं आप सब की पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।

मोहब्बत जिंदगी है, इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले को। इस गीत को सुनना चाहते थे लालगढ़ से असगर अली पंजाबगीर,

0: फिल्म ज्वेल थीप में आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद को यहीं विराम देने की सुधीर व्यास को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित

0: रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following